0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: पहले मुझे लगता था ये बीमारी सिर्फ इंस्टाग्राम, टिकटॉक और शायद फेसबुक की है, बट देन आई रियलाइज दैट दिस बीमारी हैज इन्फिल्ट्रेटेड डेटिंग एप्स एज वेल. You know what I'm talking about? Of course you don't. I will tell you. ये केक मर्डर क्या होता है? हाँ, आप सीधा सीधा अपना बर्थ डेट क्यों नहीं लिख सकते? This is the day I was born to make your life miserable. ये भी चलेगा. केक मर्डर? There is no such thing as केक मर्डर. आपके सिर्फ 3 फंक्शनल ब्रेन सेल्स हैं, तभी आप ऐसी चीज लिख सकते हो. अदरवाइज इट इज जस्ट अ वे ऑफ अनोइंग somebody एंड वेस्टिंग their टाइम. मतलब मैंने इतने सारे लोगों को डेटिंग ऐप पर ये लिखते हुए देखा ना, केक मर्डर ऑन 27th of February, एंड यू आर लाइक यार तुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था. 27th of February शुड नॉट एग्जिस्ट इन द कैलेंडर एट ऑल, बिकॉज यू आर सेइंग थिंग्स लाइक केक मर्डर. इतना बड़ा इंसान हो गया, स्कूल में नहीं है, चेंज कर ले प्रोफाइल पर, ये सब. यू साउंड लाइक अ कंप्लीट इडियट. दैट सेड, अगर आपको भी डेटिंग एप्स पर एक पर्टिक्युलर पेट पीव है कि जहां ये देख लिया वहां मैंने लेफ्ट स्वाइप करना है, बिकॉज खून खोलता है ना आपका, व्हाई डोंट यू टेल मी अबाउट इट इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. टेल मी व्हाट इज इट ऑन डेटिंग एप्स दैट रियली अपसेट्स यू, एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची.

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
3: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
0: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
4: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अपने रोके वाली रात पे तो रुक सकते थे ना आप, बट यू एंडेड अप मेकिंग आउट विद योर एक्स एंड गॉट कॉट. अब आपकी जिंदगी में क्या होगा?
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: वही होगा जो मंजूर है, योर डेस्टिनी होगा. बट इफ यू हैव अ सीक्रेट कन्फेशन टू मेक, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर, वी विल गेट टॉकिंग. मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
3: हेलो रोशी,
1: हाउ आर यू?
3: I'm good, how are you?
1: I am very good. और जब मैंने आपका confession पढ़ा, I was like, I need to talk to this girl. So what's your story, Morning Glory?
3: So मेरी एक college friend है, and वो थोड़ी सी एक intense character है. So उसका recently अभी breakup हो गया, क्योंकि उसके boyfriend ने उसपे cheat किया with her best friend.
1: Okay.
3: Of course उसको उसे सबक तो सिखाना ही था. So what she did is she took what is the most dearest thing to him. उसकी एक कार है जो उसके डैड की है. उसने उस गाड़ी के चारों टायर फ्लैट कर दिए. अब वो गाड़ी उसे अपनी सब गर्लफ्रेंड से ज्यादा प्यारी है. इतनी प्यारी कि उसके डैड ने उसकी जो झाड़ लगाई वो अलग, उसकी करंट गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया. सो माई बेस्ट फ्रेंड वॉज वेरी सैटिस्फाइड.
1: बट टेल मी दिस, उसकी करंट गर्लफ्रेंड ने उसे इसलिए छोड़ दिया बिकॉज अब उसके पास गाड़ी नहीं थी?
3: हो सकता है, पॉसिबली.
1: This is so wicked. I think this rosification is for your friend and for you, क्योंकि आपने ये confession मेरे साथ share किया.
4: You've been rosified.
1: I hope your friend has recovered from this particular situation.
3: Oh, she has absolutely avenged herself.
1: I think that sounds amazing. But next time, I hope that she's not dating someone who paragliding करता हो, क्योंकि उसे गुस्सा आए और उसका parachute ऐसे flat कर दे. We don't want people dying, okay? But all the best to your friend. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसा कोई secret confession है, hit me up on Insta या FB. We will get talking. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की spelling है ROCHIE. So go ahead and do whatever you have to do. लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.
5: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
7: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
8: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
11: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Iselin.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
15: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
14: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
16: Isse apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
14: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
17: एक ही होता है.
14: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक, न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: Start Jeeturaj. Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Oh, Kaden, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you kyunki is film mein kai chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल ए के पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं, वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeeturaj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओह ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeeturaj जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं Jeeturaj ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची Jeeturaj फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय Jeeturaj विद फोर मिर्चीज
0: साथ Jeeturaj ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
6: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन
7: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस
7: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस कृष्णा ज्वेलर्स लेडीज फर्स्ट चॉइस
8: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Her drive banegi yaadgar.
9: Tera kya hoga, Kalia?
10: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
9: Ab, mirchi kha.
11: Radio Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: भाई मेरे को genuinely लगा पहली बार कि वो kidnap हो गया है. So I met this guy on a dating app और वो इतना sweet था. He was a 10 on 10, not even kidding you. लेकिन उसकी एक छोटी सी problem थी. वो एक हफ्ता communicate करने के बाद 2-3 दिन तक गायब हो जाता था. भाई text facts का कोई जवाब नहीं, phone नहीं उठा रहा, you don't know where to reach him. पहली बार तो मुझे genuinely लगा कि वो kidnap हो गया है. Then जब ये उसकी आदत बन गई and when I finally reconnected with him, वो first time के बाद, he was like, कुछ नहीं यार, घर में बहुत भसड़ थी, बड़ा कलेश था, आई कुडंट हैव अ कन्वर्सेशन, आई एम होपिंग यू विल अंडरस्टैंड. आई वाज लाइक हाँ ठीक है कोई नहीं. उसके बाद व्हेन दिस बिकेम अ पैटर्न, आई वाज लाइक एक सेकंड, मुझे नहीं पता है कि ये जो 2-3 दिन तू गायब हो जाता है क्या करता है, स्मगलिंग करता है, तेरी डबल लाइफ है, तू कोई सीक्रेट स्पाई फॉर द कंट्री है, एंड आई डोंट इवन ऑनेस्टली केयर. यू आर जस्ट समबडी आई कैनॉट रिलाई ऑन. यू आर समवन हु मेक्स माई हार्ट गो क्रेजी थिंकिंग कि किस तरह का बंदा है, आता है जाता है, व्हाट्स अप विद दिस गाय. I think you're a wonderful person, a 10 on 10, but you're definitely not meant for me. और मैंने उसे ओके डाटा बाय बाय कर दिया. लेकिन आई हैव अ फीलिंग आई एम नॉट द ओनली पर्सन जिसके साथ ऐसा होता है. और अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ ऐसा हुआ है, यू एक्चुअली एंडेड अप मीटिंग दिस गाय हु मिस्टीरियसली डिसअपीयर्स एवरी नाउ एंड देन, और उसके पास एक परफेक्ट एक्सक्यूज होता है एवरी सिंगल टाइम टू टेल यू कि वो कहाँ गायब हुआ था. देन आई थिंक वी शुड टोटली कंपेयर नोट्स. नहीं, एंड टू डू दैट आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड एंड हिट मी अप डार्लिंग, प्रॉमिस आई विल नॉट डिसअपीयर ऑन यू. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: रोशी आपने कहा है कि गिव लव अ चांस, बट आई हैव हैड 27 ब्रेकअप्स पिछले 24 सालों में, तो इसके बारे में क्या करना चाहिए?
2: रोशी के डीएम से
1: ये खूबसूरत सवाल मुझसे पूछा है गुलाम मुस्तफा ने। देखिए गुलाम मुस्तफा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आई डू से गिव लव अ चांस, लेकिन आपके केस में ना हमें ये सोचना चाहिए कि ये रिलेशनशिप्स हैं। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नहीं है कि हमने 24 इयर्स में 27 टाइम्स ब्रेकअप कर लिया, रोशी अब मैं क्या करूं? अब आपको करना ये है कि जब आप अगली बार एक रिलेशनशिप में जाओ ना, उसे रिलेशनशिप की तरह ट्रीट करना, ठीक है? इंस्टेंट नूडल्स की तरह नहीं कि करा खाया और फिर अगले नूडल्स की तरफ चल पड़े। मे बी दैट विल चेंज द वे यू लुक एट लव। और अगर आपकी भी जिंदगी में गुलाम मुस्तफा की तरह बहुत ही अनोखे सवाल हैं जो आप किसी और से नहीं पूछ सकते हो, मैं तभी तो आपकी जिंदगी में हूँ। I am your Broshi. The name is Mirchi Roshi. Naam ke spelling R-O-C-H-I-E. So hit me up on Insta ya FB and we'll get talking about whatever you do. Kahin mat jana jana, kyunki wapas to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.

0: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: पहली बार प्यार हुआ है और अब दिमाग खराब हो गया है, क्या करूं इसके बारे में, जल्दी से मुझे फोन करो बिकॉज आई रियली नीड टू टॉक टू यू, इट्स एन SOS सिचुएशन. देवांग का ये मैसेज आया इंस्टा पर, आई टोटली हैव टू कॉल हिम. बट देवांग की तरह अगर आपकी भी जिंदगी में कोई भासड़ है, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर देवांग है. हेलो,
2: आपका शो 2-2.5 साल से सुन रहा हूं, इट्स वेरी गुड.
1: थैंक यू सो मच यार.
2: मेरे को है ना आपसे कुछ सजेशन चाहिए.
1: बोलो ना.
2: एंड सजेशन भी वो चाहिए जो मैं सुनना चाहता हूँ.
1: आई लाइक योर ऑनेस्टी. सजेशन भी वो चाहिए जो मैं सुनना
2: चाहता
1: हूँ.
2: मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है. मैं 32 साल का हूँ, आई एम अ लॉयर.
1: ओके,
2: ठीक है. सो मैं 15 घंटे बिजी रहता हूँ दिन में जनरली, एंड आई एम वेरी डेडिकेटेड कि भाई मुझे काम करना है लाइफ में और पैसा बनाना है, मेहनत करनी है. वंस आई टर्न 29 तो मेरे घर वाले shaadi.com से मेरे लड़कियां ढूंढ रहे थे, पर मैं 7-8 जगह गया, मेरी बनी ही नहीं किसी से बात. ठीक है, क्योंकि मैं हॉस्टल का बच्चा हूँ तो मुझे हॉस्टल वाले इंडिपेंडेंट लोग ज्यादा पसंद आ रहे. मैं बोला आपसे नहीं हो पाएगा, तो बोले तुम खुद करो ना, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम करते क्या. आई वेंट ऑन हिंज. वहां से एक डॉक्टर मुझे मिल गई है, उन्होंने डेट करना शुरू किया. हम मिले, बहुत बढ़िया बातचीत चल रही है, सब चल रही है. वो बार बार बोलती थी तो मुझे गोश्त तो नहीं कर देगा. उसने नंबर देने के लिए बहुत नाटक किया, सब किया. एक बार मैंने उसे बोला भी था कि यार मैं तेरा हाथ पकड़ना चाहता हूँ, तो वो बोले अभी नहीं सही टाइम आएगा. तो वो बोली तू लाल पीला हो रहा है, शर्मा रहा है ना, क्योंकि मैं बचपन से जन्मजात सिंगल हूँ. मैंने कभी किसी को डेट, जन्मजात सिंगल. ठीक है, और मैं दारू भी बहुत लिमिटेड पीता हूँ. ऑफिस में कोई पार्टी में चला गया तो एक बियर पी ली, बाकी मुझे कभी मतलब मेरे को क्लबिंग जाते हुए ये होता है कि साला पैसा भी मैं दूँ, नाचू भी मैं. मैं पैसा देके थोड़ी नाचू लगा के. तो ये मेरी फैक्ट स्टोरी है. तो उसने मुझसे पूछा था यार तू कुछ पैसा ऐसा कमाता है कि तुम लोगों का भी डॉक्टरों की तरह स्ट्रगल चलता है. तो मैं बोले ये कोई भी सेकंड डेट पे पूछता है. तो वो बोलती है कि यार देख अगर शादी करनी होगी ना तो मैं ना नानी मम्मी को बोल दे 1 लाख रुपए महीना कमाता है. अब वो इतनी डेडिकेटेड बन रही थी कि वो मंडे खुद ऑफिस आ जाती थी कि तू तो अगर ऑफिस में है तो मैं आ रही हूँ. आती थी और 2-3 बार तो मेरे प्रोटीन बार गाड़ी में छुपा के चली गई कि यार तू भूखा रह जाता है, हाईकोर्ट में रह जाता है, तो ये खा लिया कर, डोंट स्किप लंच, डोंट स्किप डिनर. अब ये जिस बंदे को कभी बाप ने कुछ नहीं दिया इतने प्रेम से, उसको बंदी दे रही है सब. ठीक है, मुझे बोलती है यार लिसन 2 days back माय मॉम वाज आस्किंग अबाउट यू. हाँ, तो तूने क्या बोला. तो बोले चल रहा है बट आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम फलाना डिमकाना. मतलब टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है. अब वो बोल रही है कि मुझे डॉक्टर से ही करनी है. बोले तू हाँ ये 15 डेटों के बाद हो रहा है रोशी. मैंने उसके लिए इतने कार्ड वार्ड. हाँ अब बोले मुझे डॉक्टर से ही करनी है. तो मेरी हो गई यार ये क्या बात हुई. और जब से मैंने कैप्रिकॉर्न के बारे में पढ़ना शुरू किया, कैप्रिकॉर्न्स पहले लव को मना करते हैं, उनका पास में कुछ इसे काटा होता है, वो दिन में उतरती चली.
1: बट ठीक है, एक बात बताऊं, आई एम नॉट इवन सेइंग वुमेन, पीपल आर क्रेजी. ठीक है, तो गोस्टिंग कभी भी कहीं पे भी बिना बताए हो सकती है. ऑनेस्टी इज अच्छी पॉलिसी होती है. बट मैं कितने रिलेशनशिप्स में रह चुकी हूँ वेयर अनएक्सपेक्टेड.
0: मिर्ची फ्रेश माल. इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
2: Tera kya hoga, Kalya?
3: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
2: Ab mirchi kha.
4: Radio Mirchi, it's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's

खाली है कयामत मत तड़पा ऐसे तू न करना इंसाफी जो गलती करने वाला हूँ मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी

अगर तुम एक इंडियन लड़की हो और इंडियन लड़के को पटाना चाहती हो, देन आई एम रियली सॉरी टू से दिस, इट्स वेरी स्टीरियोटिपिकल, लेकिन आपको एक साड़ी पहनकर ही जाना चाहिए अपनी डेट के लिए, बिकॉज दैट इज श्योरली गोइंग टू टर्न ऑन योर पोटेंशियल बॉयफ्रेंड. ऑफिस में मैंने जितने भी लड़के थे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक ऑलमोस्ट 100-150 लड़के, लाइन में खड़ा होकर उनसे पूछा है कि अगर आपके पास एक ऑप्शन हो कि आपकी बंदी कोई भी तरह के कपड़े पहनकर आ सकती है, इट कुड बी अ गाउन, इट कुड बी अ शॉर्ट स्कर्ट, इट कुड बी शॉर्ट साड़ी, लहंगा, क्या पहनकर आए, तो आपको बहुत खुशी होगी. और मतलब सबके सब 100% रिस्पॉन्स वाज साड़ी, ऑब्वियो साड़ी, ऑब्वियो साड़ी. एंड आई एम थिंकिंग टू माई सेल्फ कि यहाँ हम इतनी मेहनतें कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऐसे चोचले कर रहे हैं कि ये कलर पहनो और वो प्रैक्टिस करके जाओ और ऐसे कालीदार लाल कपड़े में बांध के इंस्टा पे जो भी अजीबो गरीब स्टोरीज आ रही है जो हम सब फॉलो करते हैं, ऑल यू रियली हैव टू डू इज वेयर अ साड़ी. इट वॉज रियली दैट सिंपल. एंड ऑल यू पीपल जिन्हें लगता है कि वो 2 मिनट में साड़ी पहन सकते हैं, एक तो क्या आप सीरियसली एग्जिस्ट करते हो? आप एक मिथिकल क्रीचर नहीं हो. और दूसरा, ये कैसे करते हैं कि 2 मिनट आप साड़ी ड्रेप कर लेते हो? क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जब साड़ी पहनती हूं ऐसा लगता है मैं गमछा पहनकर आ गई हूं. प्लीज हेल्प मी आउट एज वेल, मैं भी लोगों को इंप्रेस करना चाहती हूं. एंड टू हेल्प मी विद दिस, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, हिट मी अप, हेल्प मी आउट, एंड व्हाटएवर यू डू, कहीं मत जाना, जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: एक रोमांटिक ड्राइव क्या फिर भी रोमांटिक है अगर उसमें 7 गालियां पर मिनट की एवरेज है. सो मेरा भाई, आई ट्राई टू फाइंड हिम अ डेट ऑन एन ऑनलाइन डेटिंग ऐप और वो पहली बार इस लड़की को मिलने गया. शी सेड कि यार बारिश हो रही है, ड्राइव पर चलते हैं. तो मेरे भाई को ड्राइव करने का कोई शौक नहीं है, बट ही डजंट माइंड बींग अ पैसेंजर प्रिंसेस. साथ में बैठा हुआ है, एक घंटे बाद घर की घंटी बजती है, वो अंदर आता है एंड ही इज लाइक, यार उस बंदी ने ड्राइव करते हुए, और वो इतनी खराब ड्राइवर थी, लेकिन दुनिया भर के आसपास के लोगों को इतनी गालियां दी हैं, दैट आई हैव कम बैक, मेरे दिल में 0% प्यार और 100% दिमाग में माइग्रेन लेकर. एंड आई वाज लाइक, दैट डज नॉट साउंड लाइक अ वेरी रोमांटिक ड्राइव. ही वाज लाइक, तू जब भी कुछ ऑर्गेनाइज करती है ना, इसी तरह का वाहियात एंडिंग होता है उसका. एंड आई वाज लाइक, हाँ ठीक है, मैं नहीं ढूंढूंगी तेरे लिए लड़की, अब ढूंढ अपने लिए खुद. बट द ट्रूथ इज कि एक रोमांटिक ड्राइव को खराब करने के 100 तरीके होते हैं. गालियां देना इज जस्ट वन ऑफ दम. अगर आप भी ऐसे किसी, वेल इट सीम्ड रोमांटिक एट फर्स्ट बट एंडेड अप बीइंग वेरी वेरी अनरोमांटिक ड्राइव पर गए हो, देन व्हाई डोंट यू शेयर योर स्टोरी विद मी मॉर्निंग ग्लोरी. और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर, मेरा नाम है

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
3: मिर्ची, फ्रेश माल,
4: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज तब

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अपने रोके वाली रात पे तो रुक सकते थे ना आप, बट यू एंडेड अप मेकिंग आउट विद योर एक्स एंड गॉट कॉट. अब आपकी जिंदगी में क्या होगा?
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: वही होगा जो मंजूर है, योर डेस्टिनी होगा. बट इफ यू हैव अ सीक्रेट कन्फेशन टू मेक, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफपी पर, वी विल गेट टॉकिंग. मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
3: हेलो रोशी,
1: हाउ आर यू?
3: I'm good, how are you?
1: I am very good. और जब मैंने आपका confession पढ़ा, I was like, I need to talk to this girl. So what's your story, Morning Glory?
3: So मेरी एक कॉलेज फ्रेंड है एंड वो थोड़ी सी एक इंटेंस कैरेक्टर है. सो उसका रिसेंटली अभी ब्रेकअप हो गया क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उस पर चीट किया विद हर बेस्ट फ्रेंड. ऑफकोर्स उसको उसे सबक तो सिखाना ही था. सो वॉट शी डिड इज शी took what is the most dearest thing to him. उसकी एक कार है जो उसके डैड की है. उसने उस गाड़ी के चारों टायर फ्लैट कर दिए. अब वो गाड़ी उसे अपनी सब गर्लफ्रेंड से ज्यादा प्यारी है. इतनी प्यारी कि उसके डैड ने उसकी जो झाड़ लगाई वो अलग, उसकी करंट गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया. सो माई बेस्ट फ्रेंड वॉज वेरी सैटिस्फाइड.
1: बट टेल मी दिस, उसकी करंट गर्लफ्रेंड ने उसे इसलिए छोड़ दिया बिकॉज अब उसके पास गाड़ी नहीं थी?
3: हो सकता है, पॉसिबली.
1: This is so wicked. I think this rosification is for your friend and for you, क्योंकि आपने

रात को सोया जाता है, उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना। प्यार

0: क्या खा लिया
1: सरदार? मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. and for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal अर्थात Frank Castle aka Punisher and Tom Holland अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं and it's all required in Spider-Man brand new day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: कोई भी रोमांटिक सी फिल्म देख लो, स्पेशली जब आपको लग रहा है कि यार जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, क्या मुझे कभी कोई मिलेगा या नहीं, शायद रोमांस मेरे लिए नहीं है, जितने भी ये सारे क्वेश्चंस होते हैं ना विच ब्रिंग यू डाउन. एंड ये सिर्फ औरतों के साथ नहीं होता है, मेन फेस इट एज वेल. जब हमारे को क्राइसिस होता है ना रोमांस के सिनारियो में, देन मेरे लिए द वन थिंग दैट ऑलवेज वर्क्स इज या तो मैं कोई रोमांटिक नॉवल पढ़ लेती हूँ या मैं कोई रोमांटिक फिल्म देख लेती हूँ. यहाँ तक कि मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं, ऑल ऑफ दैट, इट काइंड ऑफ हेल्प्स मी फिगर आउट कि हाँ देर इज लव इन दिस वर्ल्ड. सिर्फ अभी शायद मेरा वक्त नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे हिस्से में प्यार नहीं है. एंड समटाइम्स दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट लाइफ. और अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो अभी करंटली इस दौर से गुजर रहा है और आपको लगता है दैट मे बी लव इज नॉट फॉर यू, लेट मी टेल यू, लव इज फॉर एवरीबडी. सिर्फ ऐसा है कि शायद अभी आपका वक्त नहीं है, और अगर ये वक्त आपसे गुजारे नहीं गुजरता, देन वाई डोंट यू हिट मी अप. And जब तक यू मीट द परफेक्ट समवन, वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन. मेरा नाम है मिर्ची रोशी.

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: सबसे खतरनाक चीज चेंज नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है बदलाव को पहचान ना पाना। और इस वक्त बॉलीवुड बिल्कुल उसी मोड पर खड़ा है। ऑडियंस बदल चुकी है, उसकी पसंद बदल चुकी है, उसकी एक्सपेक्टेशंस बदल चुकी हैं। अब देखना सिर्फ इतना है कि फिल्मों को ये बात समझने में और कितना वक्त लगेगा। हेलो, आई एम सुरेन सुंदरम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन, जहां हर हफ्ते सिर्फ गानों की रैंकिंग नहीं बल्कि बॉलीवुड की धड़कन भी सुनाई देती है। शुरुआत कर रहा हूँ विद गाना नंबर 20, व्हिच इज फ्रॉम धुरंधर एंड इट्स स्टिल माय फेवरेट।
4: नंबर 20।

एनएस के बाद एक बिल्कुल नई एंट्री। टाइटल भी क्वर्की, गाना भी क्वर्की, और जब क्वर्कीनेस की बात हो रही है तो अमित त्रिवेदी से बेहतर नाम मिलना मुश्किल है। उन्हीं का कंपोज किया हुआ, उन्हीं का गाया, कुमार भाई के लफ्जों के साथ नंबर 19 पर डेब्यूइंग राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है का टाइटल सॉन्ग नंबर 19।

0: Slipping down by one position, Arijit Singh ka gaya Tujhko from Cocktail 2. Lekin apni memories ki hard drive se ek aisa chapter dhoond ke nikal raha hoon that is gonna take you back to your friends and time. इंडिया में एक बहुत अजीब सा ट्रेडिशन है, हम फिल्मों की टिकट्स खरीदते हैं और बिना पता चले उनसे अपनी पर्सनालिटी भी खरीद लाते हैं। कभी हेयर स्टाइल, कभी कपड़े, कभी बोलने का लहजा और कभी जीने का तरीका। एक वक्त था जब तीन दोस्त अगर गोवा जाते थे तो लोग बस पूछते थे ट्रिप अच्छा था, लेकिन फिर एक फिल्म आई, उसके बाद हर दोस्तों के ग्रुप को लगा खोआ जाना तो बनता है।
1: ऐसा कुछ नहीं होगा सर, हम दोस्त थे, हैं, रहेंगे हमेशा।
0: उस फिल्म का नाम था दिल चाहता है। 25 साल पूरे हो चुके हैं इस आइकॉनिक मास्टरपीस को, और सोचो एक फिल्म ने कितनी खामोशी से पूरे देश का एटीट्यूड बदल दिया था। आमिर खान की वो स्टाइलिश दाढ़ी सलोन की रेफरेंस फोटो बन गई, फरहान अख्तर के डायलॉग्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की भाषा बन गई। वो सबसे बड़ी बात, उस फिल्म ने हमें सिखाया कि दोस्ती सिर्फ साथ हंसने का नाम नहीं, कभी कभी साथ बदलने का नाम भी होता है। इसलिए 25 साल बाद भी दिल चाहता है पुरानी नहीं लगती। हर जनरेशन को लगता है कि ये फिल्म तो शायद हमारे लिए बनी थी, और उसी साउंडट्रैक से एक गाना जो आज भी उतनी ही मुस्कुराहट दे जाता है। दिल चाहता है कि मैंने बहुत सारे गाने आपको सुनाए हैं ओवर द इयर्स, ओवर द एपिसोड्स, लेकिन दिस वन इज द फन सॉन्ग। दिस इज वो लड़की है कहां, शान और कविता जी की आवाज में, माय रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक। टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot.
4: Number 11.

0: कुछ गाने अच्छे होने के बावजूद वैसे महसूस नहीं होते जितना हमने शायद उनसे उम्मीद लगाई होती है। वे जुनून के साथ मेरे लिए कुछ ऐसा ही हो रहा है, और जितना मैंने इस बारे में सोचा उतना ही मुझे लगा कि शायद बात सिर्फ कॉम्पोजिशन की थी ही नहीं। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो एक दुनिया है, और उस दुनिया की खामोशी, उसका दर्द, उसके किरदार और उसकी तन्हाई, ये सब मोहित सूरी ने बनाई थी। इसलिए जब मोहित और मिथुन साथ साथ आते हैं तो गाने सिर्फ साउंड ट्रैक का हिस्सा नहीं रहते, वो कहानी की धड़कन बन जाते हैं, और शायद मिथुन भी इस बात से वाकिफ हैं।
1: मैं खुद तो एक जरिया मानता हूँ अपने आप को। मुझे लगता है मोहित सूरी एक ऐसे निर्देशक है जो उसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं कि धुन की जो बारीकी होती है कि उसको। कई बार मैं एक कंपोजर या एक म्यूजिशियन होने के नाते मैं एक अरेंजर भी हूँ, मेरे पिताजी भी बहुत नामचीन अरेंजर रहे म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें और इंस्ट्रूमेंट्स डालूं, मैं इसमें और कुछ करूं, लेकिन इनकी सेंसिटिविटी है मोहित की जो मुझे लगता है वो इसको कभी भी क्या कहते हैं भ्रष्ट होने नहीं देते। वो कहते हैं उसकी सादगी बरकरार रहे, यही हमारा शस्त्र है।
0: इसी पार्टनरशिप ने हमें आशिकी 2 दी, सैयारा दी और बहुत से यादगार लम्हे दिए। लेकिन अगर मोहित सूरी और मिथुन की दुनिया से मुझे सिर्फ एक गाना अपने साथ ले जाना हो तो मेरे लिए हर बार वो गाना होगा एक विलन का, हमदर्द, अरिजीत सिंह की आवाज में। दिस वन इज माय स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक। स्पेशल।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 5.

0: डायरेक्टर होता है जो एक्टर्स से परफॉर्मेंसेस निकलवाता है और एक डायरेक्टर होता है जो विजुअल्स या एक्शन के लिए याद रखा जाता है, एंड देन एक मोहित सूरी होता है जिसके सिनेमा में म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं बजता, म्यूजिक ही कहानी सुनाता है। इसलिए चाहे जहर हो, जन्नत हो, आशिकी 2 हो, एक विलन हो या फिर सैयारा हो, उन फिल्मों के गाने फिल्म खत्म होने के बाद भी दिल के अंदर चलना बंद नहीं करते। नौ गाना नंबर 5 था बंधु फ्रॉम कॉकटेल 2, लेकिन नंबर 4 पर है आवारापन 2 का टाइटल सॉन्ग, जिस फिल्म के साथ मोहित सूरी का कोई कनेक्शन नहीं है और शायद इसलिए जो इम्पैक्ट हम इंतजार कर रहे थे कि ये साउंड ट्रैक क्रिएट करेगा, उस इम्पैक्ट का अब तक थोड़ा इंतजार है। तो क्या है वो चीट कोड म्यूजिक और मूवीज के इस परफेक्ट कॉम्बिनेशन का? मोहित ने खुद उसका राज बताया।
1: सैयारा में भी ये बात बोली जाती है पिक्चर में कि हिट गाने आते हैं चले जाते हैं, 4 महीने बजेंगे, लोग नाचेंगे और चले जाएंगे, बट जो गाने रह जाते हैं ना वो दिमाग में नहीं, वो दिल में रह जाते हैं। जितना आप एफर्ट और इमोशन आप खुद को डालोगे गाने में ना, उतना आप मुझे लगता है वो यूनिवर्सल होता है। तो गानों में वो अपने आप को फीलिंग डालना, आजकल लोग थोड़ा सा एल्गोरिथम को फॉलो कर रहे हैं, रील्स को फॉलो कर रहे हैं। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि 3.5 मिनट का ही गाना बनाओ, सैयारा टाइटल गाना 6.5 मिनट का है। मुझे लगता है जब तक इमोशन रहता है वो खुद रोल अपना पोर्शन काट के रील बना देंगे, मैं क्यों उनके लिए रील बना के उनको ये दूं। तो आई थिंक हम लोग आजकल दिमाग से गाने बना रहे, दिल से नहीं।
0: यार बस यही फर्क है, और शायद इसलिए आज जब आवारापन 2 आ रही है, सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी महसूस होती है वो खुद मोहित सूरी हैं, क्योंकि पहली आवारापन रिलीज के वक्त फ्लॉप जरूर हुई थी, लेकिन सोचो ना, वक्त के साथ मोहित ने उसे एक कल्ट फिल्म बना दिया। फिर भी एक गाने ने लोगों का दिल जो है वो जीतना स्टार्ट कर दिया है। तो दूसरे ही हफ्ते में 5 स्पॉट्स ऊपर एक जबरदस्त छलांग लगाई है अमाल मलिक के इस गाने ने, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, एंड वर्ड्स है रश्मि विराग के। इस हफ्ते का हाईएस्ट गेनर ऑन नंबर 4, दिस इज ये आवारापन। नंबर 4।

my God, Chinnari Chinnari after so many weeks has finally climbed to number 2. Even though ye ek remake gana hai, even though it has nothing on the original song from BV number 1 starring Salman Khan and Sushmita Sen, uske bawajood gana jo hai wo track kar raha hai audience ke saath, and that is why itne high spot par hai. But hey, is hafte ek aur baat pata chali and samajh aaya कि कभी कभी बॉलीवुड एक एक्टर को फ्लॉप डिक्लेयर करने की इतनी जल्दी में होता है कि वो भूल जाता है कि ऑडियंस ने तो उसे कब का अपना बना लिया था. कभी कभी

डूड 11 साल बाद इमरान खान अपने कमबैक फिल्म को अनाउंस कर चुके हैं एंड ऑनेस्टली मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की हुई क्योंकि इमरान कभी सुपरस्टार थे ही नहीं लेकिन वो हर कॉलेज की कैंटीन में जरूर रहते थे।

यू माइट नॉट लाइक द फिल्म, लेकिन उनकी फिल्मों में एक ऑनेस्टी थी, एक ऑकवर्डनेस थी जो उन्हें हीरो कम और अपना दोस्त ज्यादा बना देती थी। यस, हर फिल्म नहीं चली। लेकिन शायद इन्हीं फेलियर्स ने इमरान को एक्टिंग से ही दूर कर दिया। लेकिन वक्त का भी अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। जिस एक्टर ने रोमांस के साथ करियर शुरू किया था, वो 11 साल बाद फिर एक रोमांटिक फिल्म के साथ ही लौट रहा है। फिल्म का नाम है अधूरे हम अधूरे तुम, एंड देखते हैं कि इस बार कहानी क्या मोड़ लेती है। और जो रोमांस की बात निकली है, तो उस एक्टर की तरफ चलते हैं जिसने इमरान खान के डेब्यू के 2 साल बाद ही खुद डेब्यू किया था, लेकिन आज वो बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बन चुका है। नंबर 1 पर एक बार फिर रणवीर सिंह का गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। नंबर 1।

और इसी के साथ एक और काउंटडाउन, एक और बात फिर साबित हो गई है कि हिट्स आते रहेंगे लेकिन सिर्फ वही गाने और फिल्में टिकती हैं जो दिल में अपनी एक स्पेस बना लेती हैं। नंबर वन पर लगातार डोमिनेट कर रहा है गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर, बट दैट इज इट फॉर द मिर्ची टॉप 20 दिस टाइम अराउंड।

0: कालिया
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath, only on Mirchi. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

अच्छा, दिलीप साहब हों, राज कपूर साहब हों, या फिर हों देव आनंद, ये तीनों ऐसे दिग्गज स्टार्स थे जिन्होंने जम करके ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स की, बिकॉज ऑफ कोर्स जब इन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा तो इंडियन सिनेमा बस स्टार्ट ही हुआ था. लेकिन दीज थ्री पीपल वर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट जब कलर की बात हुई. जब कलर आने लगा इंडस्ट्री में और कलर एक्सपेंसिव भी बहुत था, तो फिर एक ना ट्रेंड चला था, क्योंकि इट वॉज सो एक्सपेंसिव. तो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ऐसा करते थे कि किसी इम्पॉर्टेंट फिल्म का इम्पॉर्टेंट सीन या फिर उसका इम्पॉर्टेंट गाना जो था ना, वो कलर में कर देते थे. अब ऐसे में दिलीप साहब, देवानंद और राज कपूर साहब ने ना पूरी इंडस्ट्री को चेंज करने की ठान ली थी. सो दे डिसाइडेड कि वो बहुत सारी फिल्मों को मना करेंगे और जो फिल्में कलर में होंगी उनको करना शुरू करेंगे. अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि ज्यादातर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स फिर कोशिश करने लगे थे कि वो कलर में पिक्चरें बनाए. वेल, आज जिस फिल्म की बात होगी वो देव साहब की पहली कलर फिल्म थी. Which film am I going to talk about? ये अभी आपको पता चल जाएगा. बस कुछ गानों के उस पार, मैं हूँ श्रेया, only on Purani Jeans.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: हूँ।
1: मूवी का नाम है गाइड, जो कि देव साहब की पहली मूवी थी इन कलर। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और मैं बात कर रही थी कि कैसे देव साहब, राज कपूर साहब और दिलीप साहब ने ठान लिया था कि वो भाई कलर को लेकर के आएंगे इन द इंडस्ट्री, बिकॉज एट दैट टाइम कलर बहुत एक्सपेंसिव था। सो इसीलिए ज्यादातर पिक्चरों का इम्पोर्टेंट सीन या फिर इम्पोर्टेंट अगर कोई गाना होता है, इम्पोर्टेंट सीक्वेंस होता है, उसको कलर में कर दिया जाता था। बट दीज थ्री लेजेंड्स डिसाइडेड कि भाई अगर इम्पोर्टेंट पिक्चर भी होगी तब भी वो नहीं करेंगे अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट में है। इस चक्कर में ज्यादातर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को ना अगर ये तीन अपनी फिल्म में चाहिए थे तो वो पिक्चरों को कलर करने लगे। तो आज बात हो रही है देव साहब की पहली फिल्म विच वॉज इन कलर, एंड दैट वॉज नन अदर देन हिज ओन फिल्म गाइड। सो गाइड की ना बड़ी मजेदार बातें हैं और कुछ ऐसी इमोशनल बातें हैं ना जो आपके दिल को छू लेंगी, जैसे कि अभी नहीं बताऊंगी, गाने के साथ बताऊंगी। सो कम राइट बैक, मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गाइड फिल्म जब देव साहब बना रहे थे ना, तो ये उनके लिए बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल फिल्म थी. सो नंबर वन, ये उनकी पहली कलर फिल्म थी. एंड दूसरी, इस फिल्म में ही वांटेड एवरीथिंग परफेक्ट, ही वांटेड एवरीथिंग करेक्ट, और इसीलिए उन्होंने अपने फेवरेट कंपोजर एस डी बर्मन साहब को लिया था. अब हुआ ये कि दादा एक्चुअली में उस समय काफ़ी बीमार पड़ गए टू द एक्सटेंट कि उन्होंने खुद देव साहब से कहा कि भाई बहुत टाइम लग रहा है उनको गाने बनाने में और पता नहीं वो कब ठीक हो पाएंगे. तो इसलिए दादा ने उनको रेकमेंड किया कि क्यों ना वो कोई और म्यूजिक कंपोजर को हायर कर लें. लेकिन आपको पता है, देव साहब ने इस बात को एकदम खारिज कर दिया. ही वॉन्टेड कि गाइड फिल्म के जो यू नो डेप्थ वाले गाने हैं वो सिर्फ और सिर्फ एस डी बर्मन बनाए. जब एस डी बर्मन साहब ठीक ठाक होकर के 6 महीने के बाद वापस लौटे, तो पता है उन्होंने कौन सा गाना सबसे पहले बनाया? अभी बताऊंगी. वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जींस.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची पर उसको साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you kyunki is film mein kai chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल ए के पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं, वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: तेरा क्या होगा कालिया
5: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
4: अब मिर्ची का
6: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज बात हो रही है गाइड की, देव आनंद की पहली कलर फिल्म की। सो आई वाज टेलिंग यू कि कैसे देव साहब ने 6 महीने तक वेट किया था कि दादा यानी एसटी बर्मन साहब ठीक होकर के वापस सेट पे आ जाएं और रिकॉर्डिंग में लग जाएं। एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज कि एसटी बर्मन उस दौरान काफ़ी बीमार पड़ गए थे, इतने बीमार पड़ गए थे कि उन्होंने देव साहब को ये तक रेकमेंड किया था दैट ही कैन गो अहेड विद सम अदर म्यूजिशियन। लेकिन देव साहब को दादा बहुत पसंद थे और उनको पता था कि उन्हीं का म्यूजिक ना इस फिल्म में 4 चांद लगा सकता है। तो जब दादा वापस आए ठीक होकर के, जो पहला गाना उन्होंने बनाया वो पता है कौन सा था? वो था ये गाना जो मैं अब आपको सुनाने वाली हूँ। और ये गाना ना पता है कैसे शूट हुआ है? ये चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पे शूट हुआ था और हीरोइन जो है वहीदा रहमान, वो अपने आप को शीशे में देख रही है। ऐसे विजन दिया गया है, उसी शीशे को रखा गया है कहते हैं, जिस शीशे में क्वीन पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था उस चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पे। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

अच्छा, देवानंद और उनके भाई विजय आनंद ने पहले, पता है, हसरत जयपुरी साहब को अप्रोच किया था। उनको लगा था कि इस फिल्म के गाने हसरत साहब से लिखवाते हैं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज गाइड फिल्म की बात हो रही है, द एवरग्रीन हिट फिल्म। ऑफकोर्स इट इज गाइड, देव साहब की पहली कलर फिल्म भी थी बाय द वे। सो जब म्यूजिक टीम बना रहे थे ना, देवानंद एंड उनके भाई विजय आनंद, तो उन्होंने ऑफकोर्स एस डी बर्मन साहब को तो लिया ही था, लेकिन एज अ लिरिसिस्ट दे फर्स्ट वेंट टू हसरत जयपुरी। हसरत साहब के गाने कुछ उन दोनों भाइयों को ना पसंद नहीं आए, मतलब उनको लगा कि शायद गाने थोड़े हल्के हैं। तो देन दे टर्न्ड टू शैलेंद्र जी। अब शैलेंद्र जी को ये तो पता चल गया था कि वो दोनों की दूसरी चॉइस बने। इस बात ने शैलेंद्र जी को काफी हर्ट किया था। फिर आगे क्या हुआ, मजेदार सी कहानी है। वापस आओ श्रेया के साथ, देन आई विल लेट यू नो, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शैलेंद्र जी इस बात से नाराज कम हर्ट ज्यादा थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ और आज गाइड फिल्म की बात हो रही है। वेल द फर्स्ट फिल्म ऑफ देवानंद जो कि कलर में थी। अब इस फिल्म के लिए क्योंकि विजय आनंद और देवानंद दोनों भाई मिलके ये फिल्म बना रहे थे, उन्होंने ना जो म्यूजिक टीम रखी वो पहले थी SD बर्मन साहब एंड लिरिसिस्ट के तौर पर हसरत जयपुरी। हसरत साहब के लिरिक्स दोनों भाइयों को कुछ खास पसंद नहीं आए और देव साहब अपनी फिल्म के म्यूजिक के लिए एक्सट्रीमली कंसर्न रहते थे बिकॉज ही थॉट कि फिल्म का म्यूजिक बहुत काम आता है फिल्म की पॉपुलैरिटी में। तो फिर दे टर्न्ड टुवर्ड्स शैलेंद्र जी। अब शैलेंद्र जी को बाय वर्ड ऑफ माउथ ये तो पता चल गया था कि पहले ये दोनों भाई गए थे हसरत साहब के पास। इस बात से वो इतने दुखी हुए कि वो फर्स्ट चॉइस नहीं बने दोनों आनंद ब्रदर्स की, कि जब विजय आनंद और देव साहब उनके पास ये फिल्म लेके पहुंचे तो शैलेंद्र जी ने एक ऐसा अमाउंट कोट किया जो पहले कभी किसी लिरिसिस्ट ने नहीं मांगा था। ही थॉट बिकॉज वो कहते हैं ना वो ईगो क्लैश हो गया कि भाई अब मैं इतना पैसा मांगूंगा कि ये लोग अपना समूह लेकर के वापस लौट जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है क्या हुआ? देव साहब और विजय आनंद मान गए और पहला गाना इस मीटिंग के बाद जो पहले गाने का मुखड़ा लेकर के ये दोनों ब्रदर्स वापस गए थे वाज सो हैप्पी, वो कौन सा गाना था बताऊंगी आपको श्रेया के साथ। वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: और इससे पहले कि विजय आनंद और देवानंद उस मीटिंग से बाहर निकलते, तब तक उनको इस गाने का मुखड़ा मिल चुका था।
1: गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल।
0: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड। तो मैं बता रही थी कि कैसे ना देव साहब और विजय आनंद को हसरत जयपुरी साहब के लिरिक्स उस समय बिल्कुल नहीं अच्छे लगे थे फॉर दिस फिल्म। तो देन उनको याद आया कि शैलेंद्र जी के पास चलते हैं। शैलेंद्र जी को ऑलरेडी पता चल चुका था ये बात कि भाई सबसे पहली चॉइस उनकी हसरत जयपुरी थे। तो शैलेंद्र जी ने ना, बिकॉज ही वॉज सो हर्ट कि वो इन दोनों भाइयों की सेकेंड चॉइस बने, उन्होंने ढेर सारा पैसा कोट कर दिया। भाई ईगो तो बीच में आएगा ही, बिकॉज दिल से उनको दुख लगा था। तो ही नेवर थॉट, शैलेंद्र जी को ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि विजय आनंद और देवानंद इतने सारे पैसे उनको देने के लिए मान जाएंगे। जब दोनों मान गए तो उस मीटिंग से निकलने से पहले ये गाने का मुखड़ा शैलेंद्र जी उनको दे चुके थे। यही गाना फ्रॉम द फिल्म गाइड कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Ah,
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो पहली कौन सी इंडियन फिल्म थी टू गेट इनविटेशन फॉर कांस फिल्म फेस्टिवल, तो क्या आपको पता होगा? नहीं पता ना, मैं बताती हूँ. इट वॉज नन अदर देन देव साहब की फिल्म गाइड. पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड इट वॉज द फर्स्ट इंडियन फिल्म एवर टू बी इन्वाइटेड बाई द कांस फिल्म फेस्टिवल कमिटी. और कांस क्लासिक में इस फिल्म को, यू नो, अ सेक्शन ऑफ द फिल्म को दिखाया भी गया था. देवानंद एक्चुअली वॉक द रेड कार्पेट फॉर दिस इवेंट, और वो भी, यू नो, उनके साथ कौन थे, इंडियन एम्बेसडर उस टाइम के टू फ्रांस. सो इट वॉज huge thing and a lot of television channels and a lot of television channels तो नहीं होते थे, मतलब दूरदर्शन और सबने ना, न्यूज ने, सब ने इस बात को कवर किया था. पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ. आज ना देव साहब की फिल्म गाइड, जो कि उनकी पहली कलर फिल्म भी थी, बस उसी की बातें चल रही हैं, उसी के गाने हो रहे हैं, और आप और मैं मिल करके रिलैक्स कर रहे हैं. सो डोंट यू गो एनीवेयर.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सिर्फ ऐसे गाने के लिए आरडी बर्मन साहब ने इनको कन्विंस किया था कि बस एक बार तबला बजा दीजिए. एंड दिस रिमेन्स दी ओनली सॉन्ग इन इंडियन हिंदी सिनेमा जहां पर इन्होंने तबला बजाया. पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ पंडित शिव कुमार शर्मा, उन्होंने इस गाने में, गाइड फिल्म के गाने में तबला बजाया. सो एट दैट टाइम उन्होंने तबला छोड़ दिया था बिकॉज ही वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन संतूर. लेकिन आरडी बर्मन साहब पंचमदा उनके घर गए और उनको घंटों समझाया कि बस एक ही गाने पे आपका तबला हो जाए, अदरवाइज गाना अधूरा रहेगा. वेल, वो कौन सा गाना है? सैया बेईमान फ्रॉम द फिल्म गाइड. एस डी बर्मन साहब की धुन है, शैलेंद्र जी के लिरिक्स हैं, लता जी की आवाज़ है और तबला बाय पंडित शिव कुमार शर्मा. अब नेक्स्ट मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स.

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जब विजय आनंद और देव आनंद साहब ने ऑथर आर के नारायण से बात की तो उन्हें पता चला द गाइड जो उन्होंने किताब लिखी थी वो एक्चुअली में रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड थी. सो आर के नारायण ने उनको बताया कि द प्लॉट ऑफ द नॉवल वॉज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द आउटब्रेक एंड अ ड्रॉट प्रॉब्लम दैट टुक प्लेस उनके खुद के होम टाउन में जो कि मैसूर में था. सो वहाँ पे एक महीने तक करीब पानी नहीं बरसा था और लोगों को प्यास के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा था. एंड देन ही सेड कि एक्चुअली में ये हुआ था कि म्यूनिसिपल काउंसिल ने डिसाइड किया था कि वो ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे और इसलिए अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बहुत सारी प्रार्थनाएं और रिचुअल्स कर रहे थे वो कावेरी रिवर कावेरी के बैंक पे जा कर के बैठे और वहाँ पे जब उन्होंने प्रेस की तो 12th डे इट एक्चुअली रेन्ड. इसी एक बात को द गाइड बुक से उठा करके इसमें लव स्टोरी को थोड़ा पिरो करके इन दोनों ब्रदर्स ने दी आनंद ब्रदर्स विजय आनंद एंड देव आनंद ने द गाइड में पेश किया. लेकिन आपको क्या लगता है ये फिल्म चली थी? वेल अभी बताऊंगी. श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री इनवाइटेड थी फॉर द प्रीमियर ऑफ दिस फिल्म, लेकिन किसी ने भी आकर के ना विजय आनंद को मूवी देखने के बाद कंग्रेचुलेट नहीं किया. इट लेफ्ट हिम हार्ट ब्रोकन. पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ. लोग ना डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि विजय आनंद और देवानंद ने इतनी ऑफ बीट फिल्म बनाई है, और उस टाइम पे लोगों को ना इस फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं समझ में आ रहा था. पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड. वेल, कहते हैं कि जब ये मूवी थिएटर में खुली तो बहुत ही, मतलब जब खुली थी तब तो भाई बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस पे रिस्पॉन्स था, पर धीरे धीरे ऑडियंस कम होने लगी. बट आफ्टर अ वीक इस फिल्म की ऑडियंस फिर बढ़ने लगी एंड देन इट वेंट ऑन टू बिकम ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स एंड इट वन 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स. ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट मूवी गाइड. पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया. कम बैक राइट हियर.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची
1: पर उसको साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
2: Hi, my name is Peter Parker।
3: Okay then, Spider-Man Brand New Day आ गई है and for God's sake please थिएटर में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर God's sake किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
4: Spiders have three life cycles.
3: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है, यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है, ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है, क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, AKA Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने, वो क्या है। ओके, आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रिकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड इट्स टाइम फॉर मी टू गो। लेकिन जाने से पहले आपको तो पता ही है कि गड्डी में बैठना होता है और दूर हाईवे तक मेरे साथ जाना होता है। और राइट, आज का मेरा हाईवे हिट ना उन लोगों पे है जो खुशी में बहुत खुश हो जाते हैं और गम में ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। सो मेरी मम्मी हमेशा एक बहुत अच्छी बात कहती हैं कि बहुत खुशी आपके दिमाग पे नहीं चढ़नी चाहिए और दुख आपके दिल पे नहीं चढ़ना चाहिए, बिकॉज ये तो जीवन है।
1: यही है
0: रंग रूप, थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ। On that note, this is Shreya signing off. I'll meet you tomorrow.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: की प्यास है
1: ना, चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: साथ जीतू राज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांट्स में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभाव पूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Rituals सिर्फ रस्में नहीं, वो आदतें हैं जो कामयाबी का रास्ता बनाती हैं। आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो कई बार ना बहुत लोग कहते हैं डिसिप्लिन कैसे लाएं अपनी जिंदगी में, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीज भी याद दिलाना बहुत जरूरी कि अगर आपने ये तय कर लिया कि 3 दिन की फास्टिंग करनी है या नवरात्रों में 9 दिन के लिए करना है या यू नो रोजे रखने हैं मुझे 30 दिन 40 दिन के लिए, या लेंट का सीजन है कि मैं 1 महीने के लिए कुछ छोड़ रहा हूँ, ये भी बहुत खूबसूरत तरीका है डिसिप्लिन बनाने का। कई बार लोगों को लोग ये ओवरलुक कर देते हैं कि मैंने साल में या महीने में 1 दिन फास्टिंग की, ये भी डिसिप्लिन बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है।
4: स्पिरिचुअलिटी में ये रिचुअल्स होते ही इसीलिए। रिचुअल्स किस लिए होते हैं? रिचुअल्स एक रिमाइंडर का काम करते हैं। वो रिमाइंडर क्या होता है? अच्छा, आप 9 दिन ये करके देखो, लेकिन आप करो उसको अपनी खुशी से, मजबूरी से नहीं करो, करने के लिए नहीं करो। फिर जब आप वो करते हैं तो आपको उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। जैसे अगर आप देखेंगे ना, थोड़े दिन के लिए भी अगर लोग सात्विक खाते हैं या फास्टिंग करते हैं तो कहेंगे बहुत अच्छा लगता है, बहुत हल्का लगता है, बहुत लाइट फील होता है, उनको बेनिफिट मिलते हैं। अब एक्चुअली जब आपको किसी चीज का बेनिफिट मिलता है तो आपको उसको क्या करना चाहिए?
3: और करना चाहिए।
4: पर हम कई बार क्या करते हैं,
3: अरे हो गया यार, फैशनेबल था, ठीक है, अब अगले साल करेंगे,
4: पूरा हो गया। बस प्रॉब्लम ये है स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो डिसिप्लिन्स होते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन क्या करता है, जैसे आपने पहले भी बहुत सुंदर लाइन कही थी, वो फ्रीडम दिलाता है। हमें लगता है कि डिसिप्लिन बंधन है, एक्चुअली डिसिप्लिन बंधन नहीं है। नियम मर्यादाएं, लोगों को तो ये शब्द ही नहीं आजकल अच्छे लगते,
3: लेकिन
4: कई सारे जो बंधन होते हैं ना, जैसे रक्षा बंधन हम कहते हैं, कई बॉन्डेज ऐसे होते हैं जो आपकी रक्षा करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका ये बंधन है, आपका नियम है, मैं 6:30 के बाद कुछ नहीं खाता। कई लोग करते हैं ना, खाने में भी, आई विल नॉट ईट एनीथिंग आफ्टर 6:30। तो लोग कहेंगे क्या है, ऐसा कैसा डिसिप्लिन है, ऐसा थोड़ी ना। पर वो डिसिप्लिन उसको बेनिफिट करता है, उसको पता है कि वो हल्का रहता है, हेल्थ अच्छी रहती है, नींद बहुत अच्छी आती है, सुबह उठने में उसको बहुत कंफर्टेबल होता है। तो वो सारे बेनिफिट, तो उसके लिए वो बंधन नहीं जो कर रहा है, उसको तो फ्रीडम फील होता है कि नहीं भाई, ये डिसिप्लिन बनाने से मुझे ये बेनिफिट है। देखने वाले को क्या लगता है,
3: क्या बंधन में जी रहे हो तुम?
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डिसिप्लिन को दोस्त बना लेंगे तो सक्सेस का सफर आसान हो जाएगा। कैसे, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: और ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, हाल फिलहाल में मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने कई दिनों बाद गया था, कई सालों बाद गया था, और मैं भी कोशिश करता हूँ 7:30 के बाद कुछ ना खाऊं। अब डिनर कर रहा था, मेरे चाचा जी आ गए, उनसे बहुत सालों के, ऐसा कैसे, ये क्या बकवास है, तुम शहरी लोगों का यही प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या समझते हो तुम अपने आप को, खाना तो पड़ेगा, जूस पिलाओ इसको, ये वाला चीज़ दिलाओ ये। अब मैं कह रहा हूँ मैं नहीं खा पाऊँ, सुबह से खा रहा हूँ, बट उनका जो प्यार है वो सारा खाने में उमड़ता है। तो ऐसे केस में क्या, सामने वाला बुरा मान रहा है, वो कहते हैं तुम्हें तो जाने ही नहीं दूंगा, मतलब लिटरली उन्होंने मेरे मुंह खोल के सामान उसके अंदर डाला है।
4: देखो, उसमें ऐसा होता है कि ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि वो उनका प्यार है, तो कभी कभी हम उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, डिसरिगार्ड नहीं करना चाहते, हम थोड़ा बहुत अगर एक आध दिन थोड़ा सा लेते भी हैं। पहली बात तो रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो नहीं होती कि हमें उनके अनुसार चलना है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपको बहुत फोर्स कर रहे हैं और तो भी अगर आपने नहीं कुछ लिया, लेकिन आप उनके फोर्स करने से बुरा नहीं माने, आप हर्ट नहीं हुए, आप अपसेट नहीं हुए, आपने भी प्यार से बात करी, आपने जरा सा एक टुकड़ा उनको कुछ करने के लिए ले भी लिया, आप वो रिश्ता बना सकते हैं।
3: सही बात है।
4: होता क्या है, वो फोर्स कर रहे होते हैं, हम हर्ट हो जाते हैं, एक ईगो क्लैश होने लगता है, फिर उनको लगता है इन्होंने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया। अब हम सबके अकॉर्डिंग तो अपना जीवन नहीं जी सकते ना, ये हमारे जीवन के डिसिप्लिन है।
3: बहुत बढ़िया,
4: हर एक को अपने जीवन में कुछ डिसिप्लिन्स तो बनाने ही पड़ते हैं ना, वो डिसिप्लिन्स उनके लिए फ्रीडम का काम करते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: डिसिप्लिन से दूरी गोल से दूरी है, आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: बिल्कुल, ये बिल्कुल मैं देखता हूँ और बहुत अच्छे से ये फॉलो करता हूँ। और कई बार क्या होता है कि वो आता ही नहीं आप तक, वो पहुँचने के पहले वो इंसान आप तक आएगा और बोलेगा अरे इसको बताने को फायदा नहीं है क्योंकि ये तो सुनेगा ही नहीं,
1: सुनेगा ही नहीं।
3: एक चीज आपने बंधन की बात कही तो उससे मेरे दिमाग में आया कि कभी कभी डिसिप्लिन जो होता है ना वो एक पनिशमेंट की तरह लगता है कि यार इतना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मैं ये खा नहीं सकता, मुझे ये नहीं कर पा, मैं वो नहीं कर सकता एक्सेट्रा। और क्योंकि डिसिप्लिन में बहुत बार सैक्रिफाइस इन्वॉल्व होता है, वो पनिशमेंट की तरह लगता है, तो ऐसे केस में इसको इसका नजरिया कैसे बदले हम?
1: पनिशमेंट वो ज्यादा देखने वाले को लगता है। जो कर नहीं रहा होता ना डिसिप्लिन, उसको लगता है ये तो बड़ा, जैसे कोई सुबह उठने की बात है या रोज जिम जाने की बात है या जो भी आपका डिसिप्लिन है, तो देखने वाले को वो बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन करने वाले को, जैसे हमने पहले भी कहा कि उसको उस डिसिप्लिन से कुछ ना कुछ
3: फायदा
1: मिल रहा है, उसको नहीं पनिशमेंट लगता।
3: कई बार ऐसा भी होता है सिस्टर कि इतना कुछ करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो। कभी कभी हम IIT की पढ़ाई कर रहे हैं, JEE के एंट्रेंस के कर रहे हैं, या फिर हम मेहनत कर रहे हैं वजन लूज करने के लिए, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए मेहनत कर रहे हैं, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हम ऐसा करेंगे और सक्सेसफुल नहीं हुए, तब जो आसपास वाले लोग हैं जिनको ये पनिशमेंट लग रहा था वो बोलते हैं अरे मैंने तो पहले ही कहा था, तुम क्यों कर रहे थे इतनी मेहनत। और कई बार होता है साइकिल रिपीट होता है, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जो एग्जाम है उनको बहुत टफ माना जाता है, तो कई बार लोग 4-5 बार 6-7 बार देते हैं और बहुत समय, बहुत साल भी इसमें निकाल देते हैं, तो उस समय ज़्यादातर आप पे आपके दोस्त वगैरह हावी हो जाते हैं, आपके रिलेटिव्स की, यार क्या तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, 4 साल निकल गए तुमने टाइम वेस्ट कर दिया। तो ऐसे केस में जब सामने वाले को आपने कहा उसकी नजर में पनिशमेंट है लेकिन आप भी नहीं क्रैक कर पा रहे, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें?
1: पर आपने ऐसे केसेस भी तो देखे हैं ना, हम ये वाला एग्जांपल तो पहले ले लेते हैं कि इतनी बार किया तो भी नहीं हुआ, पर हमारे पास वो एग्जांपल भी तो है ना कि जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, सेकेंड नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ, फोर्थ में हो गया, पर उनको भी तो उन लोगों ने कहा था ना, फर्स्ट में भी बोला होगा छोड़ दो, सेकंड में भी बोला होगा छोड़ दो, थर्ड में भी बोला होगा छोड़ दो, फोर्थ में हो जाता है तो सब वाह वाह करने लगते हैं। पर वो फोर्थ में क्यों हुआ? क्योंकि उस व्यक्ति ने छोड़ा नहीं, उसने गिव अप नहीं किया, उसने उसके ऊपर, ये जो हमने पहले भी कहा कि हार नहीं मानो आप, फेलियर इज, यू नो, इट्स नॉट अबाउट फेलिंग, इट्स अबाउट नॉट गेटिंग अप। तो अगर आप उठ जाते हैं, आप फिर से ट्राई करते हैं, आप फिर सफल हो जाते हैं, जब सफल हो जाते हैं तब तो सब वाह वाह करते हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छा हुआ आपने छोड़ा नहीं, आपने फिर से अटेम्प्ट दिया, फिर उन्हीं की कहानियां, उन्हीं की मोटिवेशनल स्टोरीज, उन्हीं के इंटरव्यूज हम सुनते हैं, फिर हम कहते हैं इनका चौथे अटेम्प्ट में जाकर के क्लियर हुआ। लेकिन वो कहता ना कि मेरे को तो सबने कहा था छोड़ दो, पर उसको अपने पर विश्वास था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ नोबडी इज ट्रस्टिंग यू, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ बिलीफ, ये आपको बहुत आगे लेकर के जाता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब जरूरतें कम होती हैं, तो सक्सेस का सफर आसान हो जाता है। आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो सब लोग आके तो कहते हैं कि सब लोग आके आपको बोलते हैं तो और बड़ाई करते हैं आपकी। वो लोग जो शुरू में कह रहे थे वो भी आके आपकी बड़ाई करते हैं। तो कहते हैं सक्सेस इज रिलेटिव, द मोर सक्सेसफुल यू आर द मोर रिलेटिव्स यू विल हैव।
4: दैट्स समथिंग दैट वी सी इन द वर्ल्ड, होता है ये।
3: अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि मिनिमलिज्म जो है या न्यूनतमवाद जिसे कहते हैं कि जितनी जरूरत है उतने से ही काम चलाओ, ये भी एक डिसिप्लिन का एक तरीका है। स्पिरिचुअलिज्म में तो इस बारे में बहुत बात होती है, लेकिन कोविड के बाद भी हमने देखा इसका असर कहिए कि घर में जाके वो सारी चीज़ें जो हमने एक दो साल तीन चार साल में यूज़ नहीं की उसको धीरे धीरे निकाल देना। तो मिनिमलिज्म क्या डिसिप्लिन का बहुत बड़ा हिस्सा है?
4: है ज़रूर, क्योंकि मिनिमलिज्म क्या करता है, कम चीज़ें होना क्या करता है, क्यों ज़रूरी है, जिसको हम और सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे सिंपल लिविंग,
3: कम
4: हाई थिंकिंग,
3: कम से कम चीज़ों से जीवन का जो यापन करना है वो कर सकते हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग।
4: क्यों ज़रूरी है वो, हमें सिंपल लिविंग क्यों चाहिए?
3: क्योंकि मतलब बिना किसी कपड़ों के आए थे और ऐसे जाना है, वापस चाहिए क्या?
4: पर जीवन जीने के लिए ये सब चीज़ें भी तो चाहिए ना।
3: बट बहुत बेयर मिनिमम चीजें चाहिए।
4: पर बेयर मिनिमम क्यों रखें, अगर ज्यादा भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है? आज ये चीज बहुत बज में है, कम होना चाहिए। हाँ। कम से कम चीजें होनी चाहिए, घर में भी कम से कम जितनी जरूरी है उतनी होनी चाहिए। एंड पीपल आर चेंजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग, और ये कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग।
3: लेकिन क्यों होना चाहिए?
4: पर क्यों होना चाहिए
3: बताइए?
4: कोई कहता है भाई मेरे पास 100 जूते भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है, 100 कपड़े भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है, क्यों कम से कम होना चाहिए?
3: क्यों?
4: पहली चीज तो ये जो इतना मटेरियलिज्म है, दो बातें हैं। पहले तो हमें ये इतनी सारी चीजें चाहिए क्यों? ये हमें चीजें नहीं चाहिए होती है,
3: इससे जो हमें मिली वो फीलिंग मिलती है कि हम ऐसा
4: हैं। इसलिए जब हम कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उसमें सिंपल लिविंग कभी हो ही नहीं सकती जब तक आपकी हाई थिंकिंग नहीं है। पहले हाई थिंकिंग होती है फिर सिंपल लिविंग होती है, क्योंकि वो चीजें जो इतनी इतनी चीजें हैं, हमने इतना बटोरा हुआ है, वो सब हमें लगता है हमें क्या दे रहा है, खुशी,
3: जबकि वैसा बिल्कुल नहीं है।
4: नहीं है, टेम्पररी तो मिलता ही है, वैसा है,
3: मिलता है।
4: पर मिलता तो है ना, अभी मुझे जहां से भी मिलेगा चाहे वो एक स्टिमुलेशन है ना, वो अभी वो कपड़े में तो कोई खुशी नहीं है, पर जिस दिन आपने खरीदा, इनफैक्ट आई मेट वन लेडी वेरी रिच, सो जब भी वो थोड़ी उदास होती है वो शॉपिंग पे निकल जाती है, अब वो शॉप करती जाती है, फिर वो कई बार कहती है, फिर वो ठीक हो जाती है, जैसे समझो अभी वो उसका एक लो फेस था, वो कहती कई सारे बॉक्सेस हैं जो मैंने आज तक खोले ही नहीं है। लेकिन उस समय जब उसने खरीदा होता है तो उसको एक, जैसे आपको एक हाई फीलिंग होता है, स्टिमुलेशन का काम करता है ना हर चीज। तो अगर आप अंदर खुश नहीं है, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत उदास है, बहुत परेशान है, तो आप उन चीज़ों को एक स्टिमुलेंट की तरह यूज़ करते हैं, आप लेते जाते हैं, वो आपको टेम्प्ररी खुशी देती है। और क्या होगा, ये चीज़ें जितनी आपको आज जो चीज़ दे रही है वो कल नहीं देती,
3: नहीं देंगी बिल्कुल।
4: एडिक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, चाहे वो शॉपोहॉलिक है वर्कहॉलिक है, क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है।
3: बिल्कुल।
4: तो आज जितने चाहे वो क्वांटिटी है चाहे वो उसका प्राइस टैग है, आप उससे ऊपर नहीं खरीदते तो वो स्टिमुलेंट काम नहीं करता ना। जैसे स्टिमुलेंट में भी आज आपको एक सिगरेट जितना आती है चाहे वो उसका प्राइस टैग है, आप उससे ऊपर नहीं खरीदते तो वो स्टिमुलेंट काम नहीं करता ना। जैसे स्टिमुलेंट में भी आज आपको एक सिगरेट जितना देती है कल दो।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: खुशी, सेहत और दौलत जरूरी हैं, पर एक जैसे नहीं। आइए इनकी इम्पोर्टेंस समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: यू नो आई थिंक राकेश झुनझुनवाला पास्ट अवे लास्ट ईयर, और मुझे याद है उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उनके आखिरी दौर की बात है कि वो कहते हैं कि आज मैं वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया हूँ, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि भगवान ने मुझे बेटर हेल्थ दिया होता। मैं भगवान से सिर्फ यही दुआ करता हूँ। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम दैट इज कि आदमी के पास पैसा भी बहुत हो, लेकिन अगर उसे इंजॉय करने के लिए प्रॉपर हेल्थ नहीं है तो क्या ही कर लेगा। तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग बहुत जरूरी है।
4: हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों जरूरी हैं, और तीनों का एफर्ट अलग है।
3: हाँ,
4: हमें लगता है वेल्थ आ जाएंगे तो हेल्थ अपने आप आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हेल्थ के लिए अलग, जो हम कहते हैं एक घंटा तो निकालो एक्सरसाइज के लिए, एक घंटा तो निकालो, समय पर तो सो, अच्छा खाना तो खाओ, वो हेल्थ है। उस पर भी हमारा कईयों का अटेंशन नहीं होता, कुछ भी खाया, कभी भी सोया, कभी भी उठा, एक्सरसाइज नहीं करी। हेल्थ एक अलग ब्रैकेट में है, वेल्थ वो तो हमें सबको पता है, हम कितनी कितनी मेहनत करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, पर हमें लगता है वेल्थ आ जाएंगे तो खुशी आ जाएंगे, नहीं होता। खुशी मन की स्थिति है, वेल्थ माना कंफर्टेबल लाइफ, नॉट नेसेसरली अ हैप्पी लाइफ। सो यू कैन बी वेरी कंफर्टेबल, आपका एक बहुत कंफर्टेबल घर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कंफर्टेबल सोफा है, आसपास नौकर हैं, तो भी आप एंजाइटी में हो सकते हैं, तो भी आप बहुत परेशान और डिप्रेशन में हो सकते हैं। तो तीनों के लिए अलग वर्क करना पड़ता है।
3: बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत बात कही।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
2: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
3: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी. एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
4: नो
5: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स. कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
2: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इसलिन.
6: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पहले खुशी ढूंढिए, डिसिप्लिन खुद जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी हम डिसिप्लिन जो है वो इसलिए भी करते हैं किसी और को इम्प्रेस करने के लिए। तो अगर वो हमारा जर्नी रहा तो वो ज़्यादा दिन लास्ट नहीं करेगा। कभी कभी हमको वजन इसलिए कम करना होता है क्योंकि हमको किसी और को इम्प्रेस करना होता है। कभी हम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसलिए सीखना चाहते हैं कि किसी को इम्प्रेस करना है।
4: नहीं, हम किसी के लिए नहीं कर रहे होते उसमें। एक्चुअली हम किसी को भी क्यों इम्प्रेस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इम्प्रेस होगा तो वो
3: हमसे खुश होगा,
4: और जब वो हमसे खुश होगा तो हमें
3: अच्छा बेहतर लगेगा।
4: तो हम कर तो अपने ले रहे होते हैं।
3: अच्छा, तो वो भी ठीक है अगर किसी को इम्प्रेस करने के लिए भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन तरीके से कर रहे हो तो कुछ सीख ही लोगे आप।
4: एक्चुअली वो बहुत ठीक तो नहीं है। सी, बट देन अंडरस्टैंड ये करना होता है कि हम कर अपने ले रहे होते हैं। भले आप क्या कह रहे होते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, पर आप पहले ये वाली जो लाइन है ना कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ, वो लाइन ठीक नहीं है।
3: कर हम अपने लिए ही कर रहे हैं।
4: हम कर अपने लिए रहे होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो खुश होंगे, उनकी खुशी में हमारी खुशी होती है। तो ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं होता। हम कुछ किसी के लिए नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं सटली उसमें हमारा स्वार्थ जरूर होता है, उनकी खुशी में हमारी खुशी होती है। तो राइट मोटिवेशन तो ये होगा कि आप जो कर रहे हैं आप अपने लिए करें।
3: आपने मुझे बहुत प्यारी लाइनें याद दिला दी कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पर रोना आया। बहुत खूबसूरत।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: React नहीं, सोच समझकर respond कीजिए. आइए दोनों का फर्क समझते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: मुझे याद है कि डू हार्ड थिंग्स बोल के किताब है, वो लिखी है स्टीव मैग्नस ने, वो ऑथर हैं, ओलंपिक्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके साथ बहुत काम करते हैं, एथलीट्स के साथ काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ ऑथर भी हैं. तो वो कहते हैं कि उनकी किताबें जो डू हार्ड थिंग्स है, उस किताब में उन्होंने कई बातें लिखी हैं, उसमें से वो कहते हैं कि मेडिटेशन जो है वो हमारे रिएक्शन और रिस्पॉन्स के टाइम को डिले कर देता है. तो वो डिसिप्लिन के लिए लिखते हैं कि मेडिटेशन भी डिसिप्लिन का बहुत बड़ा हिस्सा है, मेडिटेशन से डिसिप्लिन बढ़ता है वो, क्योंकि रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना में दो फर्क है. और वो कहते हैं कि बड़े से बड़े एथलीट को आप देखेंगे वो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते, और मेडिटेशन उसका बहुत बड़ा हिस्सा है. और क्या आपको लगता है कि मेडिटेशन से हमारी लाइफ में ज़्यादा डिसिप्लिन आता है?
4: 100%. क्योंकि क्या होता है, जब आप ओलंपिक्स लेवल पर पहुंच जाते हैं, जब आप बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं ना, तो वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा आपके टैलेंट और स्किल का रह ही नहीं जाता. क्योंकि वहां पर हर कंट्री के बेस्ट आए हुए हैं.
3: बिल्कुल, हाँ, बहुत बड़ी बात है.
4: तो वो सब हार्ड वर्किंग है, वो सब उस स्पोर्ट में परफेक्ट है, स्किलफुल है, टैलेंटेड है,
3: 10 on 10 है,
4: वो सारे 10 on 10 है. अब आपके अंदर जो फर्क रहता है वो 0.1 second, 1 second का भी नहीं होता है,
3: fraction of a second. बिल्कुल.
4: तो वहां पर जो हार जीत रह जाते हैं ना इतने टॉप लेवल पर, वो ज्यादातर मेंटल टफनेस की ही होती है.
3: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है.
4: इसीलिए आजकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इतनी क्यों आ गई
3: है.
4: पूरा एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट ही है. आपकी जो टीम है उसके साथ फिटनेस कोर्स अलग चलता है, लेकिन जो आपका साइकोलॉजिस्ट है वो अलग चलता है. कि अगर आप मन से हार गए तो आप कितने भी टैलेंटेड हैं, आप कितने भी स्किलफुल हैं, आप हार जाएंगे.
3: बिल्कुल. अगर इसका जीता जागता उदाहरण देखना हो तो कुछ दिनों पहले चैंपियंस ट्रॉफी में ग्लेन फिलिप्स ने पाकिस्तान के मैच में एक अपने लेफ्ट साइड पे कैच लिया, और फिर इंडिया के खिलाफ उन्होंने अपने राइट साइड पे कैच लिया, एंड जहां तक मुझे याद है रिप्ले में मैं देख रहा था 0.62 seconds का रिएक्शन टाइम उनके पास था, वो उड़ते हुए उन्होंने कैच लिया पैरेलल टू द ग्राउंड. तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स में तो बहुत सारे हमको एग्जांपल मिलते हैं कि एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट फिजिकल हेल्थ, इट्स नॉट अबाउट ट्रेनिंग, इट्स नॉट अबाउट माइंडफुलनेस,
4: इट इज अबाउट दैट
3: आल्सो, बट सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मेंटली, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अरे यार इतनी तेज बॉल आ रही है, अरे हवा पे कौन उठेगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे, बट टू बी एबल टू रिएक्ट लाइक दैट, वो इन ह्यूमन कैपेबिलिटी है.
4: इट गिव्स यू एन एज. बाकी सब कुछ इम्पोर्टेंट है, और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. ऐसा नहीं, फिटनेस भी उतनी इम्पोर्टेंट है, ट्रेनिंग भी उतनी इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस भी, स्किल भी, लेकिन वो जो मेंटल टफनेस है वो आपको औरों से एक थोड़ा सा
3: नहीं बहुत बेहतर बना
4: एज आपको दे देती है. जो मुझे याद है एक जो माइकल फेल्प्स करके
3: बिल्कुल ओलंपिक
4: स्विमर है, बहुत बार
3: वर्ल्ड रिकॉर्ड,
4: तो उनके कोच जो कहते थे कि वो जो आप रिस्पॉन्स और रिएक्शन की बात करें, कहते हैं उन्होंने अपने मन में हर प्रकार का रिस्पॉन्स देखा होता था. वो जीत रहे हैं वो भी देख लिया. अब उनकी वो जो रेस है वो 8-9 seconds की होती है. इट इज जस्ट 8-9 seconds. उसके बीच में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं वो भी देख लिया. कि मना स्विमिंग कैप उतर सकती है, जो भी उनके चैलेंजेस हो वो भी देख लिया. उन चैलेंजेस में वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वो भी देख लिया. तो वो मन ट्रेन हो जाता है. आपके पास 9 seconds में वो मार्जिन नहीं रहते कि आप सोचेंगे और रिस्पॉन्स देंगे.
3: बिल्कुल.
4: आपने ऑलरेडी कम से कम 100 times वो चीज देख लिया कि अगर ये होगा
3: तो मैं ऐसे करूंगा,
4: तो ये मेरा रिस्पॉन्स होगा. सो इनकेस अगर वो होता है तो वो रिस्पॉन्स आपका बहुत नेचुरल होता है, ऑटोमेटिक होता है. और ये भी देख लिया कि 1% इफ आई लूज, कितनी ग्रेस और डिग्निटी से हम सामने वाले को जाकर के कंग्रेचुलेट करते हैं, उसको उस फेलियर को भी हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं वो भी देख लिया. का जब सब कुछ देख लिया होता है तब वो इतनी बार मेडल जीत पाते हैं. इट इज नॉट जस्ट देयर स्किल एंड प्रैक्टिस.
3: बहुत बहुत खूबसूरत एग्जांपल आपने दिया, वेरी ब्यूटीफुल.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानी।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
2: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
3: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
2: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़लिन।
6: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रिची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, सवाल आया है कि अजीत पाल हैं, वो पूछ रहे हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है और कई बार आता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कई देर तक वो मेरे दिमाग में चलता रहता है जब वो स्थिति या वो इंसान चला भी जाए, और उससे मैं बहुत इरिटेटेड रहता हूँ काफी लंबे समय तक। ये मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, प्लीज मुझे गाइड करिए।
2: जब हम गुस्सा करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ही होता है। गुस्सा हमें आता इसलिए है क्योंकि एक्चुअली ये वीकनेस की निशानी है।
1: अच्छा,
2: कब हमें गुस्सा आता है? जब सामने वाला कुछ हमारे अनुसार नहीं करता है।
1: बिल्कुल
2: सॉरी, मेजॉरिटी केसेस में हमें लगता है सब कुछ हमारे अनुसार होना चाहिए। लोग हमारे अनुसार होने चाहिए, सिचुएशन हमारे अनुसार होना चाहिए, हमने ऐसा बोला उसको ऐसा करना चाहिए। सो व्हेन थिंग्स डोंट हैपन माय वे, मेरे तरीके से नहीं होता, तो मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा आना माना क्या है? अंदर डिस्टर्बेंस हो रही है। बोल में भी बाद में आएगा, लेकिन अंदर मन डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। मन थॉट्स क्रिएट करता है। तो गुस्से में क्या थॉट आ रहे हैं, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको टाइम पर आना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको कितनी बार समझाया। आपका एक एक थॉट गुस्सा क्रिएट कर रहा है। गुस्सा आता नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम कोई चीज बहुत बार कर लेते हैं ना, तो हमारा संस्कार बन जाता है, नेचर बन जाती है। तब हमें लगता है ये ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन एक्चुअली सबकॉन्शियस लेवल पर वो हम ही कर रहे होते हैं, हम क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो थॉट अपने आप तो नहीं आता ना, हम क्रिएट कर रहे होते हैं। सेम सीन में किसी को बहुत काम होगा और किसी को बहुत गुस्सा आ जाता है, सेम चीज होगी। एक व्यक्ति लेट आया, एक कहते ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी आ गया ना, चलो अब शुरू करते हैं। दूसरा इतना गुस्सा कर देता है, कैसे लेट आया, उनको दूसरे के टाइम की वैल्यू नहीं है, उनको अपने टाइम की वैल्यू नहीं है, उनको मेरी वैल्यू नहीं है। सो दीज टू पीपल आर थिंकिंग डिफरेंटली। तो गुस्सा कुछ नहीं है, कुछ मेरे अनुसार नहीं हुआ, मेरे मन ने गलत सोचना शुरू किया, मेरा मन डिस्टर्ब हो गया। अब वो थॉट लेवल तक तो रहता नहीं है। फिर वो जो मैं गलत सोच रहा हूँ, अगर वो कोई मेरा सबॉर्डिनेट है, जूनियर है, अगर सीनियर होता तो हम कहते मैं गुस्सा पी गया ना, कई बार हम कहते मैं गुस्सा पी गया, तो गुस्सा पी का क्या मतलब है? अगर सीनियर होता तो हम कहते मैं गुस्सा पी गया ना, कई बार हम कहते मैं गुस्सा पी गया, तो गुस्सा पी का क्या मतलब है?
1: फिर भी रह गया अंदर।

0: सोचना है, आपको काम ही तो कराना है ना। पहले तो ये समझे कि सब कुछ हमारे अनुसार होगा, ये कैसे पॉसिबल है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उस चीज का इतना मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम तो लोगों के और उनके संस्कारों के और उनके बिहेवियर के गुलाम हो गए ना। समझो कोई लेट आया है, अब कहते मेरे को बहुत गुस्सा आया, आप अपने को प्रोटेक्ट करें ना, वो लेट आया आप अपने को कहे अच्छा इसको कहना है, ये नहीं चलेगा कंपनी में, ऐसा नहीं चलता, कुछ तो डिसिप्लिन होता है ना, आपको उसको कहना है, बस आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको सही सोचकर सभ्यता से वो बात कहनी है, क्योंकि अगर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं ना फिर आपके बोल भी सभ्य नहीं होते।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: देखो तुम माइक के उस पार हो, मैं माइक के इस पार हो। तुम्हारे हाथ में कॉफी चाय या ब्रेकफास्ट है, मेरे हाथ में माइक है। एंड कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, थैंक गॉड मिर्ची मॉर्निंग्स ने मुझे उठा दिया, वरना अलार्म क्लॉक की आवाज सुन सुनकर तुम्हें परेशान हो गई थी। Hey there, good morning, मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे थे मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर, जो कि अभी अभी शुरू हुआ है। एंड नाउ वेदर यूर ड्राइविंग टू वर्क, पैकिंग टिफिन, ड्रॉपिंग योर किड्स ऑफ टू स्कूल, या फिर प्रिटेंड कर रहे हो जस्ट रेस्टिंग योर आईज फॉर 5 मोर मिनट्स व्हाइल यू बिकम अ बुरिटो इन योर ब्लैंकेट। आज का प्लान काफी सिंपल है, काफी सारी बातें होने वाली है, काफी सारा नॉस्टैल्जिया होने वाला है, बहुत सारी गुड वाइब्स होने वाली है, एंड इनफ मिर्ची एंड मसाला टू मेक योर मॉर्निंग्स अ लिटिल मोर मिर्चीदार। And if you're enjoying the ride, come say hi to me on Instagram and X. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp par number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
3: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
4: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
7: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint. Celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the Government of India since 2008, we're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport, and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
8: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
9: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Iselin.
12: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
13: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 Oak Tree Road, Iselin, न्यू जर्सी।
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
14: अब मिर्ची खा।
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
17: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हे देयर, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड चलो टाइम मशीन में बैठकर पता करते हैं आज का दिन क्यों खास था। 1877 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एसएफ हॉल डिस्कवर्ड डायमोस, मार्स का छोटा आउटर मून। फिर 1919 में इंडिया वेलकम्ड अ फ्यूचर स्पेस लेजेंड डॉक्टर विक्रम साराभाई, बॉर्न इन अहमदाबाद। लेटर ही बिकेम नोन एज द फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। 1981 में IBM ने अपना फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर दी IBM PC 5150 स्टोर्स में सेल करना स्टार्ट किया। और 1990 में सू हेंड्रिक्सन डिस्कवर्ड सू, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंप्लीट टीरेक्स फॉसिल एवर फाउंड। एंड देयर इज मोर। 1994 में मेजर लीग बेसबॉल प्लेयर वेंट ऑन अ मैसिव स्ट्राइक दैट लास्टेड 232 डेज, कैंसलिंग द वर्ल्ड सीरीज। एंड 2000 में द रशियन सबमरीन कुर्स्क सैंक आफ्टर द ऑनबोर्ड एक्सप्लोजन, किलिंग ऑल 118 पीपल अबोर्ड। एंड टुडे इज ऑल्सो इंटरनेशनल यूथ डे। सो वेदर यू आर 18 और 48 एंड स्टिल गूगलिंग कैन एडल्ट्स एक्चुअली फिगर आउट लाइफ, कंग्रेचुलेशंस, यू आर यंग एट हार्ट। And now follow me at Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. Instagram or X पर मेरा यही handle name है, और WhatsApp number है 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Cadence, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you kyunki is film mein kai chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशा एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं, वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
7: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन
8: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Edison, New Jersey. Conditions apply.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning. It's Priscilla on Mirchi Mornings. And here's your weather check. Because before you leave the house, you need to know aaj kya kya carry karna hai saath mein. Umbrellas, sunglasses, ya phir dono. Right now, we are at 70 degrees Fahrenheit and it's cloudy. It's feeling like 71 degrees Fahrenheit. Aur abhi weather jo hai, it's relatively nice. शुगर करो ऊपर वाले का एंड डोंट गेट टू कंफर्टेबल बिकॉज शाम के 5 बजे तक सन तुम्हारे साथ ही रहने वाला है विद टेम्परेचर्स क्लाइंबिंग टू अ हाई ऑफ 87 डिग्रीज फारेनहाइट एंड विद ह्यूमिडिटी सनशाइन एंड विंड प्लेइंग देयर गेम द 87 डिग्रीज फारेनहाइट कुड फील लाइक 90 डिग्रीज फारेनहाइट मतलब आज थर्मामीटर के भाव काफी बड़े हुए हैं यस्टरडेज हाई वॉज 87 डिग्रीज फारेनहाइट सो टेम्परेचर वाइज आज थोड़ा सा हाई रहने वाला है अब रेन वाइज देख लेते हैं पिछले 24 घंटों में देयर वाज जीरो रेन बट वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 8 millimeters ओवर द नेक्स्ट 24 hours सो कीप दैट अम्ब्रेला हैंडी स्पेशली इफ यू आर हेडिंग आउट लेटर अराउंड 5 PM तक थिंग्स विल टर्न पार्टली क्लाउडी सो मॉर्निंग की सनशाइन जो है तभी तक रहने वाली है आफ्टरनून की हीट भी तभी तक रहने वाली है लेकिन इवनिंग के क्लाउड्स तब आ जाने वाले हैं सो आज के दिन बाहर निकलोगी तो लेयर के प्लेयर बनो कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर वेयर योर SPF 50++++ एंड ऑफ कोर्स कीप मिर्ची की वाइब्स ऑन मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस दैट इज MIRCHIPRIS टैग मी इन योर एस्थेटिक वेदर पिक्चर्स एंड WhatsApp पर मुझसे कनेक्ट करो 9033 मिर्ची पर दैट्स 9033 647244 स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट

0: Tony. Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: I'm Priscilla and this is Mirchi. Aawak Tri, jahan par tumhe teen updates milti from around the world only on Mirchi Mornings. सबसे पहले न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोरान ममदानी एडमिनिस्ट्रेशन इज रोलिंग आउट लार्ज कर्बसाइड गार्बेज कंटेनर्स अक्रॉस न्यूयॉर्क एज पार्ट ऑफ अ प्लान टू गेट दोज इनफेमस ट्रैश बैग्स ऑफ द साइडवॉक्स। द ब्रॉडर प्रोग्राम एम्स टू कंटेनराइज रेजिडेंशियल ट्रैश सिटी वाइड विद थाउजेंड्स ऑफ स्पेसेस प्लान्ड। मतलब कि न्यूयॉर्क में अब गार्बेज का डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पॉट बन गया है। नंबर टू पर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड हैज बीन अपॉइंटेड बाय रशिया एज इट्स आर्बिट्रेटर इन एन इन्वेस्टमेंट ट्रीटी डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग यूक्रेन स्टेट ओन्ड बैंक ओशाड बैंक। द केस कंसर्न्स क्लेम्ड लॉसेस इन्वॉल्विंग एसेट्स इन यूक्रेनियन रीजन्स अफेक्टेड बाय द रशिया यूक्रेन वॉर। अ थ्री मेंबर ट्रिब्यूनल विल हियर द डिस्प्यूट। एंड लास्टली आईपीएल से रिपोर्ट सेज Hardik Pandya explored a possible return to Gujarat Titans but reportedly wanted the captaincy as a condition. Gujarat Titans reportedly said no. The franchise has discussed a possible return with current captain Shubman Gill who was reportedly open to the move. However, Pandya's spokesperson said he had no direct conversations with the franchise about a transfer. And that's it for Mirchi Aawak 3. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Connect karo mujhse Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi. That's 9033647244. Chalati ho Mirchi dar bangers tumhare liye. Stay tuned and stay home.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: सेलिब्रेट आजादी विद ईडन रोब एंड ब्रिंग द फीलिंग ऑफ होम टू USA. फ्रॉम ऑगस्ट 6th टू 16th, एंजॉय फ्लैट 35% ऑफ ऑन अपैरल फॉर मेन, वुमेन, किड्स एंड फ्लैट 10% ऑफ ऑन फ्रेग्रेंसेस. विजिट आवर फ्लैगशिप स्टोर इन नॉर्थ ब्रंसविक, न्यू जर्सी, और शॉप nationwide at us.edenrobe.com. Eden Robe, a legacy of style.
5: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
6: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
7: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
10: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
11: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
12: ਆਈ ਐਂਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ।
13: ਅਰੇ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ, ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ।
14: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਨੇਕ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1, ਜ਼ੋਹੋ 1। ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1।
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Iselin.
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
16: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
17: गोली गोज डाउन द ग्राउंड, गोली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
16: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
18: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
16: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
19: एक ही होता है।
16: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
20: मिर्ची, फ्रेश माल।
21: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: आज का बर्थडे गैंग इज लोडेड विद बॉलीवुड एंड हॉलीवुड एंड फैशन एंड पॉलिटिक्स एंड वन मैन हु लिटरली टोल्ड अस टू गेट अ बेबी गॉड बैक। आज है ऑगस्ट 12th। मेरा नाम है प्रिसिला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स एंड हे इफ इट्स योर बर्थडे, सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू जी। एंड बॉलीवुड साइड पे वीव गॉट सारा अली खान, जिन्होंने केदारनाथ, सिम्बा एंड लव आजकल में काम किया। एंड इंटरनेशनली बर्थडे केक गोज टू कैरा डेलवीन, द मॉडल टर्नड एक्ट्रेस विद अमेजिंग आईब्राउज। देन वीव गॉट बेन एफ्लेक के छोटे भाई केसी एफ्लेक, हु इज ऑल्सो एन ऑस्कर विनिंग एक्टर एंड डायरेक्टर। And then we've got Lakeith Stanfield, known for Atlanta and Judas and the Black Messiah. And then there's Sir Mix-a-Lot. Yes, that's Sir Mix-a-Lot, the rapper behind Baby Got Back. So agar aaj ke din tumhara bhi happy birthday, to congratulations. Sabse pehle tum kaafi amazing list ka part ho and tumhara birthday soundtrack to set hai. And saath mein aaj ke din we've got the investor and philanthropist George Soros and closer to home, Karnataka's political veteran Siddaramaiah. To aaj ke din khao piyo aish karo aur apne बर्थडे शाउटआउट्स अपने लिए या अपने फ्रेंड के लिए मुझे भेज सकते हो। मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। साथ में कनेक्ट कर सकते हो सोशल मीडिया पर भी, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। अभी के लिए मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए प्ले करती हूँ, स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
5: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
8: दिस इंडिपेंडेंस डे वी सेलिब्रेट नॉट जस्ट आवर फ्रीडम बट इंडियाज ग्लोबल फुटप्रिंट, सेलिब्रेटिंग इट्स 25th ईयर सिंस इट्स इनसेप्शन इन 2001। VFS ग्लोबल टुडे सर्व्स ओवर 79 गवर्नमेंट्स, ऑपरेटिंग 4250 एप्लीकेशन सेंटर्स इन 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport, and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इसलिन।
12: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
13: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
14: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hello, ending the second hour of Mirchi Mornings with a bang. Yani ki Mirchi Mornings par aane wali hai gold rate update. Mera naam hai Priscilla.
2: Rajwas wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,020. $4,020 per ounce ke saath aaj subah gold ke price trade kar rahe hain. और इस साल के बिगनिंग में गोल्ड $5,600 पर ट्रायउंस पीक टच कर चुका है. आज करेक्शन के साथ $4,020 पर ट्रायउंस डेफिनेटली एंट्री पॉइंट पड़ती है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए. 1 ounce, 10 ounce, 100 ग्राम्स, किलो बार्स, पैम्प सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार्स में इन्वेस्ट करने के लिए राजवल्स की टीम के साथ कनेक्ट करें. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: एंड देयर यू हैव इट, मिर्ची मॉर्निंग्स पर सुनी तुमने एक्सक्लूसिव गोल्ड रेट अपडेट With me, Priscilla. Of course, follow me Insta and X पर. मेरा handle है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp का number है 9033 Mirchi, that's 9033647244. For more such updates, stay tuned and stay hot.
0: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, it's Priscilla with you. Welcome to Rashi Zone Part 1, जहाँ पर हम बातें करेंगे राशियों के बारे में only on Mirchi Mornings.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: It is यानी कि मेष राशि. विजन काफी क्लियर है, सो वर्क प्रोजेक्ट्स को कॉन्फिडेंटली असेस कर पाओगे. बस स्पीड थोड़ी सी स्लो रखो. एक शॉर्ट आउटडोर वॉक स्ट्रेस को रीसेट कर सकता है. लकी कलर तुम्हारा है टील एंड लकी नंबर इज 8. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, एनर्जी स्ट्रांग है, बॉडी भी कोऑपरेशन मोड में है. न्यूट्रिशियस फूड चूज करो और ट्रस्ट करो फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना. हाँ भाई, फ्राइज भी फूड होता है, लेकिन आज थोड़ा सैलेड की तरफ ध्यान देना. लकी कलर फॉर यू इज कोरल. लकी नंबर इज 4. जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, स्केड्यूल में थोड़े से डिलेज या सडन चेंजेस पेशेंस टेस्ट कर सकते हैं. हर चीज का फोरेंसिक एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है. इवनिंग को समवन क्लोज के साथ थोड़ा चिल प्लान बनाओ, सब सही हो जाएगा. लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 3. कैंसर यानी कर्क राशि, इंट्यूशन आज ऑन पॉइंट है. कुछ होने से पहले ही वाइब पकड़ लेते हो तुम. इस क्लैरिटी को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में यूज किया जा सकता है. जस्ट अ थॉट. लकी कलर फॉर यू इज सिल्वर. लकी नंबर इज 7. लियो यानी कि सिंह राशि, इमोशनल रीसेट का पीसफुल विंडो मिल रहा है. फैमिली के साथ कंफर्टिंग पॉजिटिव मोमेंट्स एंजॉय करो. आज मैं सब हैंडल कर लूंगा मोड से थोड़ा सा ब्रेक लो और थोड़ी सी हेल्प मांगो. लकी कलर फॉर यू इज एम्बर. लकी नंबर इज 1. वर्गो यानी कन्या राशि, पर्पस क्लियर नहीं है तो रशिंग से फ्रिक्शन बढ़ सकता है. पेस को स्लो करो, स्पेशली मनी मैटर्स में. स्प्रेडशीट्स को भी सांस लेने दो भाई. लकी कलर फॉर यू इज ऑलिव. लकी नंबर is 6. And that was Rashi Zone Part 1. मैं of course हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings. मुझे connect करो Insta और X पर. मेरा handle है Mirchi Pris and WhatsApp पर number है 9033 Mirchi. That's 9033647244. अब बारी है झमाझम मिर्ची दार गानों की. थोड़ी सी देर में वापस आती हूँ. Stay tuned and stay hot.

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। रेडियो मिर्ची इट्स
1: हॉट, 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: And this is Priscilla welcoming you back to Rashi Zone ka part 2 only on Mirchi Mornings.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि रेस्टलेसनेस थोड़ी सी सरफेस पर आ सकती है बट यूज कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन रिव्यूड इन्वेस्टमेंट्स में फेवरेबल पोटेंशियल दिख रहा है सो वाइज चॉइसेस मैटर लकी कलर इज सफायर ब्लू लकी नंबर इज 11 स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि छोटी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थोड़ी सी फ्रिक्शन क्रिएट कर सकती है आज इश्यूज को रूट तक समझो लेकिन मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस को आज होल्ड पर रखना ही बेटर है लकी कलर इज बर्गंडी लकी नंबर इज 5 सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि फ्रेश स्टार्ट एनर्जी इज हियर करियर हो या रिलेशनशिप हो न्यू बिगिनिंग्स को एम्ब्रेस करने का दिन है ओल्ड बैगेज को कैरी ऑन में डालकर क्यों घूम रहे हो लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज लकी नंबर इज 9 कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि आज तुम लोगों के लिए स्टेबलाइजिंग फोर्स बनोगे वर्क प्लेस में हार्मनी क्रिएट करो व्हाइल फाइनेंसेस लुक स्टेडी बेसिकली ऑफिस का अनऑफिशियल थेरेपिस्ट आज से तुम हो लकी कलर फॉर यू इज मस्टर्ड लकी नंबर इज 2 Aquarius यानी कुंभ राशि एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन या मीटिंग कुड लीव अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन यू योर इनोवेटिव आइडियाज शेयर करने का टाइम आ चुका है लेकिन अनएक्सपेक्टेड स्पेंडिंग से बचने का टाइम भी चल रहा है आइडियाज रेवोल्यूशनरी हो सकते हैं इम्पल्स परचेज जरूरी नहीं है लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ब्लू लकी नंबर इज 13 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसिस यानी कि मीन जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन मैटर मोस्ट टुडे पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखो बिकॉज that could open doors professionally too. Slow progress is still progress, okay? Lucky color for you is sea green. Lucky number is 10. And that's it. Your cosmic download is done. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. Obviously on Mirchi Mornings. मेरे साथ यहाँ बने रहो और social media पर भी. Mirchi Pris is my handle name. That is MIRCHIPRIS. That's on Instagram and X and WhatsApp पर. Number है 9033 Mirchi. That's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

0: Saad Jeeturaj. Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you kyunki is film mein kai choti choti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeeturaj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeeturaj जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है Jeeturaj ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची Jeeturaj फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय Jeeturaj विद फोर मिर्चीज
0: साथ Jeeturaj ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
7: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
8: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
7: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
9: क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
10: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन
11: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड इसलिन न्यू जर्सी कंडीशंस अप्लाई
12: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
13: रिश्ते विश्वास से बनते हैं रिश्ते निभाने पड़ते हैं ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स
14: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड इसलिन न्यू जर्सी
15: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी हर ड्राइव बनेगी यादगार
16: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं विराट एक ही होता है
17: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड
16: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
18: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
16: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
19: एक ही होता है।
16: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: And just like that, my friend, Mirchi Mornings is wrapping up. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein. But before I let you go on with your day, here's something for all my desi fashion lovers out there in New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison on Oak Tree Road. We are talking about 70 years of Indian craftsmanship, from gorgeous handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear. So, agar tumhari family WhatsApp group mein suddenly messages drop hone lag gaye hain ki beta shaadi ki shopping kab shuru कर रहे हो, बेटा शादी आने वाली है, तुमने अपने लिए कपड़े खरीद लिए या नहीं खरीद लिए, बेटा तुम्हारी कजन की शादी है तो अच्छे कपड़े पहनकर आना, कांग्रेचुलेशंस, नाउ यू हैव अ डेस्टिनेशन जहां से तुम ये सारी शॉपिंग कर सकते हो. द यूएसए फ्लैगशिप स्टोर इज एट 1655 ओक ट्री रोड, एडिसन. जाकर चेकआउट करना बनता है, अमेजिंग कलेक्शन है उनका. सोक अप द कलर्स, द क्राफ्ट्समैनशिप एंड फुल देसी फैशन वाइब, सब कुछ तुम्हें वहां पर मिलेगा. लेकिन ये याद रखना कि सिर्फ देखने तो नहीं जा सकते, तुम जाओगे पक्का शॉपिंग स्प्री पर निकल जाओगे, ये मेरी गारंटी है. इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैंगिंग आउट विद यू दिस मॉर्निंग. मेरा नाम है प्रिसिला एंड यू हैव बीन लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स. थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग्स. अभी के लिए मिर्चीदार बैंगर्स ऑन रखते हैं. टाटा बाय बाय सिर्फ मेरी तरफ से है. जाकर कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर भी नोट कर लो, 9033 मिर्ची इज माई नंबर, 9033647244. अभी के लिए टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

0: सुबह का टाइम हुआ करता था और स्कूल बस में सब चुप होते थे। क्यों? क्योंकि स्कूल असेंबली के लिए न्यूज जो ढूंढनी होती थी।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. और हाँ, हमारी जिंदगी में ऐसा भी तो एक टाइम हुआ करता था यार। आज की मॉर्निंग्स हम कहते हैं कि वी मस्ट गो स्लो, आराम से कॉफी इंजॉय करो एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन बचपन की मॉर्निंग्स हमारी बहुत तूफानी हुआ करती थी यार। भागम भाग में तैयार होना, भागम भाग में नाश्ता करना, भागम भाग में बस पकड़ना, और फिर फाइनली जब बस में बैठ जाते थे तो सब शांत। क्यों? क्योंकि हम सब ना न्यूज लिख रहे होते थे। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में ऐसा होता था कि नहीं होता था, लेकिन हमारे स्कूल में डेफिनेटली होता था कि यार हम सबको ना एक छोटी सी डायरी मेंटेन करनी पड़ती थी। वो डायरी हमेशा हमारी पॉकेट्स में रहा करती थी, एंड उस डायरी के अंदर रोज सुबह हमें न्यूज लिखकर ले जानी होती थी स्कूल, ताकि असेंबली में अगर अचानचूक किसी को बुला लिया जाए, जो कि होता भी था हमारे साथ, हमें न्यूज बोलनी आनी चाहिए ऑन द स्टेज। और इसीलिए सब अपने आप को बचाते हुए हर रोज सुबह बस के अंदर न्यूज ही लिख रहे होते थे, एक नेशनल, एक इंटरनेशनल और एक लोकल। तब ना ये सिस्टम बहुत बोर लगा करता था, बहुत चिड़ होती थी, और दिमाग यही कह रहा होता था कि यार ये रोज सुबह क्या क्या टंडे लगाने पड़ते हैं यार, न्यूज़पेपर घर से लेकर आओ और फिर बस में बैठ के न्यूज टीपो। हमारे घर में ना दो न्यूज़पेपर आते थे इसी चक्कर में, एक जो मैं स्कूल लेकर जा पाऊं जब मुझे न्यूज लिखनी होती थी बस के अंदर, और दूसरा जो घर पे रह जाए ताकि बड़े पढ़ पाए। लेकिन ये जो चिड़न कुड़न बलन थी ना, और जो बोरियत होती थी इन सारे कामों को करते हुए, आज समझ आ रहा है कि ये अच्छी चीज थी यार। कसी जो न्यूज अपडेट रखने की आदत मुझे आज है ना, वो यहीं से तो आई है। वैसे ना लाइफ में और भी ऐसी कई सारी आदतें हैं जो हमें तब तो बहुत ही इरिटेटिंग लगा करती थी, क्योंकि तब करना पड़ता था क्योंकि हम छोटे हैं, लेकिन आज जब वो हमारी लाइफ में एक अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है और डिसिप्लिन लेकर आ रही है ना, तो लगता है कि हाँ यार कुछ आदतें अच्छी होती हैं। बताऊंगी आपको थोड़ी देर में उन आदतों के बारे में, लेकिन अभी के लिए मिड मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालने की बारी आ चुकी है। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Celebrate Azadi with Eden Rove and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edenrove.com. Eden Rove, a legacy of style.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
2: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
2: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
6: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ. शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति. 7323578200. जय गुरुदेव.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
7: अब मिर्ची खा.
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: रात में कपड़े प्रेस करके, बैग जमा के, सारी तैयारी करके सोना, ये हमारी बचपन की आदत थी। और जब रात में ये सारे काम करने पड़ते थे ना, आधी नींदों में थके हुए होते थे फिर भी, क्योंकि अगले दिन स्कूल है, तो बहुत आलस आता था यार। मम्मा इतना बोल बोल के, पुश कर करके हमसे काम करवाती थी ताकि अगली सुबह हम स्कूल जाने के लिए लेट ना हो जाए। लेकिन ये आदत ना आज बड़ी अच्छी लगती है।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और बचपन की कुछ आदतें जो तब तो हमें लगता था कि बड़ी फोर्स्ड है, हम बड़े बेमन से किया करते थे, लेकिन आज लगता है कि यार अच्छा हुआ जो ये सब सीख गए, काम में आ रही है। उनमें से एक यही है, रात में सुबह की तैयारी करके रख लेना सारे कामों की। और उसमें से स्पेशली कपड़े प्रेस करने वाली जो आदत थी हमारी, ये बड़ी सही काम आ रही है यार आज के टाइम पर। मतलब मैं तो अब उन लोगों को भी बड़ा प्रेस करती हूँ जो मैं तो कर ही रही हूँ, लेकिन खुद भी इस आदत को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोग इस आदत को भूल भी जाते हैं। लेकिन आज भी जो लोग इस आदत पर अपना पूरा ध्यान फरमाते हैं, वो मेरा ध्यान भी ले जाते हैं। और ऐसे लोगों को देखकर समझ में आता है, हाँ ये इंसान जो है ना, ये बड़ा डिसिप्लिन्ड है। So, जो कहां की चीज कहां जोड़ के हम इंसान की पर्सनालिटी ट्रेट निकाल लेते हैं कि ये इंसान डिसिप्लिन है क्योंकि ये रात में अपने कपड़े प्रेस करके सोता है। और हाँ, ये बात सच्ची है कि मुझे वो लड़की पसंद है जो रात में अपने सुबह की तैयारी कर लेते हैं। इनफैक्ट पता है, आज भी मेरे साथ ऐसा होता है कि अगली सुबह की जब तैयारी कर रही होती हूँ ना, रात में अपने कपड़े वपड़े प्रेस करके रख रही होती हूँ, तो ऐसा फील आ रहा होता है जैसे कि स्कूल की तैयारी कर रही हूँ। आज तक ये फील कभी नहीं आया है कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे ऑफिस जाने की या कहीं बाहर जाने की तैयारी करनी पड़ रही है। आज भी स्कूल वाला ही फील आ रहा होता है, जो फील शायद आपको भी समझ आए, जो सुबह भी आता है। अगर कभी ऐसा होता है कि हम अपने रूटीन से पहले सुबह सुबह उठ जाते हैं किसी काम के चलते, तो ऐसा लगता है जैसे स्कूल जाने के लिए उठे। यू कैन टेक द किड आउट ऑफ द स्कूल, लेकिन यू कैन नॉट टेक द स्कूल आउट ऑफ दैट किड, जो आज भी हमारे अंदर कहीं बसा हुआ है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subah karein start chustiyon mein. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
5: Looking for the best care for your child? 7 Days Pediatrics in Edison is here for you.
6: From newborn to adolescents, we offer comprehensive care. Get hassle-free same-day appointments, immunizations, and well-child visits.
5: Our multilingual staff is available evening and weekends, along with easy telehealth options. Proudly serving the Edison and Woodbridge areas. Book your appointments today. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-307-0668.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आजकल जो हम हमेशा अपने साथ एक बॉटल रखते हैं कैरी करते हुए, हमें लगता है कि हम बॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं. नो वेज, ये आदत हमारे बचपन की है.
2: आज की बात 90s के साथ.
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और ये आदत हमने स्कूल से सीखी है यार, जब रोज बॉटल भरकर ले जाना हमारे लिए लाजमी हुआ करता था. इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा लगता था कि यार ये बॉटल और कैरी करनी पड़ती है, क्योंकि वो लटकाने वाली बॉटल होती थी, कैरी करने वाली बॉटल नहीं हुआ करती थी. हमेशा एक बॉटल हमारे गले में लटकी रहती थी, कंधे पे लटकी रहती थी, या कैसे भी करके उसे हमें कैरी तो करना ही होता था. तब बड़ा जोर आता था, लेकिन अब लगता है कि यार ये जो स्किन के हाइड्रेशन के लिए आदत पड़ी है ना, ये बड़ी सही पड़ी है यार. हमें लग रहा होता है कि हमने बॉलीवुड से ये सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन नहीं बाबा, हमने ये आदत जो है ये बचपन में ही सीख ली थी. टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड स्कूल में टीचर्स कब से कहा करती थी यार. और अब जो हमें ये बोझ नहीं लगता है ना कि हमें बॉटल भी कैरी करनी है, वो इसी वजह से, क्योंकि बचपन में हम इसके ऑलरेडी आदि और इत्यादि हो गए थे. बॉलीवुड ने सिर्फ और सिर्फ इन बॉटल्स को थोड़ा फैंसी कर दिया है, लेकिन ये जो आदत है ना, इसका क्रेडिट बॉलीवुड को नहीं दे सकते बॉस, बचपन को देना जरूरी है. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा.
3: Radio

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Bipasha Basu जो नो एंट्री में इतना छा गई थी, क्या आपको पता है वो नो एंट्री में होने ही नहीं वाली थी.
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And well, बिपाशा बसु का जो कैरेक्टर था, that was supposed to be played by प्रियंका चोपड़ा. लेकिन फिर हुआ ये कि प्रियंका चोपड़ा को बैकआउट करना पड़ गया, क्योंकि वो मुझसे शादी करोगी की शूट में बिजी थी और नो एंट्री की शूट पे नहीं आ पा रही थी. तो उन्होंने जो एडवांस भी लिया था वो भी उनको वापस करना पड़ गया था. लेकिन बिपाशा बसु की जैसे ही एंट्री हुई, एक्चुअली हुआ ये कि इतनी लास्ट मिनट एंट्री हुई ना, कि वो एक वेकेशन से लौटी थी और उन्होंने वजन बढ़ा लिया था. अब ये जो कैरेक्टर उनको प्ले करना था, वो तो हम सबको ही पता है कि बड़ा हॉट एंड सेक्सी कैरेक्टर था. इनफैक्ट इन एन इंटरव्यू कहीं जॉन अब्राहम को मैंने ये भी बोलते हुए सुना था कि बिपाशा जो थी वो बीमार भी पड़ गई थी, जिसकी वजह से उनके वर्कआउट्स और डाइट्स जो है वो पूरी तरीके से कम्प्लीट ही नहीं हो पा रहे थे. यानी कि हुआ था सोने पे अभागा. लेकिन फिर भी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बिपाशा बसु ने पूरी मेहनत करी और पूरी कोशिश करी कि वो कामयाब हो पाए. एंड इनफैक्ट वो कामयाब हुई भी. आज भी हमें बिपाशा बसु का वो कैरेक्टर इन नो एंट्री स्टिल याद है. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2. देसी खाना,
5: देसी शॉपिंग,
4: देसी कल्चर
5: और देसी एंटरटेनमेंट,
4: बस एक ही डेस्टिनेशन,
5: इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर, सितंबर 12th और 13th, श्री कृष्णा मंदिर, मॉर्गनविल.
6: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org.
7: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्काटवे. आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मां स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ. शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति. 7323578200. जय गुरुदेव.
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा.
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बचपन से हम इस गाने को गुनगुनाते आए हैं और आज इसकी धुन की सच्चाई सामने आ गई है।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: वेल, त्रिदेव का ये गाना

अब आप भी सोच रहे होगे कि क्या यार सारा दोनों धुने एक के बाद एक बजा दी, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली दो अलग अलग जगहों से उठाई हुई धुने हैं। एक तो जो मैंने आपको सुनाई वो त्रिदेव की थी, एंड ये जो म्यूजिक जहां से इंस्पायर्ड है, रादर कॉपीड है, इज मायमी साउंड मशीन का द रिदम इज गोना गेट यू। यार वैसे तिरछी टोपी वाले ने तो शौक से एज अ फैशन स्टेटमेंट ये टोपी पहनी थी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर विजू शाह ने तो पूरी ऑडियंस को ही टोपी पहना दी। वाह, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Celebrate Azadi with Eden Rove and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids, and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey, or shop nationwide at us.edenrove.com. Eden Rove, a legacy of style.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
2: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
4: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
2: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस. दिस Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
5: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully red, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
6: Batting तो काफी सारे करते हैं. विराट एक ही होता है.
7: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
6: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
6: Moral of the story, number one, सिर्फ एक ही होता है.
9: एक ही होता है.
6: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
10: It's 12:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: Saad Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you kyunki is film mein kai choti choti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeeturaj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeeturaj जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं Jeeturaj ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची Jeeturaj फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिकमेंडेड बाय Jeeturaj विद फोर मिर्चीज
0: साथ Jeeturaj ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
7: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन
8: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस
8: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस कृष्णा ज्वेलर्स लेडीज फर्स्ट चॉइस
9: तेरा क्या होगा कालिया
10: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
9: अब मिर्ची खा
11: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: लकी अली एंड सुनिधि चौहान की आवाज में दिस गाना इज फ्रॉम द फिल्म सुर, जो कि कैसेट के साइड बी का चौथा गाना है।
0: मिर्ची 90s कैसेट
1: आ भी जा, ये गाना मुझे बहुत खूबसूरत लगता है यार। हालांकि गाना थोड़ा सैड है, मेलैंकली है इस गाने के अंदर, लेकिन ये गाना जो है ये पॉजिटिविटी की बात कर रहा होता है, क्योंकि इस गाने में यही गाया गया है कि आ भी जा ए सुबह आ भी जा और रात को कर विदा दिलरुबा आ भी जा। यानी कि हम जो वो टनल के एंड में एक लाइट ढूंढ रहे होते हैं ना, दिस गाना इज समवेयर अराउंड दैट फैक्ट ओनली। अब ये सुबह ना किसी के लिए मोहब्बत हो सकती है, ये सुबह किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये सुबह किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ जीने की एक वजह हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि इंसान कौन सी सिचुएशन में है और उस सिचुएशन के हिसाब से उस इंसान के लिए ये सुबह क्या मायने रखती है। इस गाने में हालांकि मोहब्बत के बारे में बात की गई है और तभी ये कहा गया है कि मैं हूँ गगन तू है जमीन, अधूरी सी मेरे बिना, रात को कर विदा दिल रुबा भी जा। लेकिन वही वाली बात है कि हम लाइफ में अभी फिलहाल किस चीज को रोमांटिसाइज कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जो हमें चाहिए और तहे दिल से हम उस चीज के लिए दुआएं कर रहे हैं। मेरी दुआ भी आपके लिए है कि आपकी वो दुआ कबूल हो जाए और जाते जाते यही गाना हो जाए। क्या बोलते हो, ये गाना आपके लिए लगाती भी जा रही हूँ। एंजॉय द ट्रैक एंड मैं अब कह देती हूँ कि हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मिल जाइएगा मुझे ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। Stay tuned to Mirchi, cause it's hot.
2: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRB Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.

0: Amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

अच्छा, तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी होता होगा कि तुमने कोई चीज बहुत मन से, बहुत शिद्दत से बनाई हो, एंड यू वांटेड एवरीबॉडी टू अप्रिशिएट दैट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लोगों को ना तारीफ करने का मन ही नहीं किया. तो डिसअपॉइंटिंग तो लगता ही है. पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया. और आते ही बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल ऐसा लगा था देवानंद और विजय आनंद साहब को, दोनों ब्रदर्स को, जब उन्होंने बनाई थी फिल्म गाइड. तो जब गाइड का प्रीमियर हुआ ना, पूरी इंडस्ट्री वॉज इन्वाइटेड, एंड विजय आनंद को लगा था कि थोड़ी ऑफ बीट फिल्म है, थोड़ी उनकी जितनी भी कमर्शियली सक्सेसफुल, यू नो, चटपटी मसालेदार बॉलीवुड फिल्में हैं उनसे अलग है, तो लोग आकर के

ना उनको अप्रिशिएट करेंगे, कंग्रेचुलेट करेंगे कि कितना अलग कुछ बना दिया है. लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं. Nobody walked up to him and congratulated him. And this left him shattered. कि भाई क्या हो गया, ऐसा क्यों. लोगों को एक्चुअली गाइड का क्लाइमैक्स और इतनी अलग फिल्म ना पसंद ही नहीं आई. स्पेशली जो लोग प्रीमियर देखने आए थे, यानी भाई इंडस्ट्री के लोग. फिर क्या हुआ, गाइड यू नो इतनी सक्सेसफुल कैसे हुई, ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है, सब बताऊंगी. अभी अभी तो आई हूँ, थोड़ा सा इंतजार करो. पुरानी जीन्स पे, दिस इज मी श्रेया.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
5: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
6: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर in demand healthcare careers.
5: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
7: नो!
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एवेन्यू, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Listener mein back to back gana sunega.
12: Back to back gana sunega.
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Ah,
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी बॉक्स ऑफिस पे खुली तो एकदम फुल हाउस थी, लेकिन उसके बाद सब डिप करने लगा। लोग आ नहीं रहे थे देखने, टिकट्स बिक नहीं रहे थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिक हिट फिल्म गाइड, जिसमें थे देव साहब, उनके भाई विजय आनंद ने फिल्म बनाई थी ऑन द वेरी वेरी पॉपुलर बुक द गाइड विच वॉज रिटन बाय आर के नारायण। तो मैं बता रही थी कि जब लोगों को ये पता चला कि भाई देव साहब की फिल्म है तो लोग डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पे इसको देखने गए, लेकिन लोगों को इतनी अनकन्वेंशनल ऑफ बीट फिल्म और स्पेशली क्लाइमैक्स ना समझ में आने के चक्कर में ना कुछ ही दिनों में इसका कलेक्शन डिप करने लगा। बट कहते हैं बाय वर्ड ऑफ माउथ ये फिल्म इतनी पॉपुलर हुई और लोगों को जब इसका क्लाइमैक्स कुछ समझ में आया तो लोग वापस इस फिल्म को देखने लगे। आई मीन दिस वॉज वन ऑफ दोज फिल्म्स जिसको लोगों ने दो दो तीन तीन बार जा करके देखा एंड इसीलिए बाद में इसका कलेक्शन ओ हो आसमान छूने लगा। दैट इज वाई 7 फिल्मफेयर अवार्ड्स जीते थे इस फिल्म ने उस साल। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें मेरे यानी आपकी श्रेया के साथ, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice. Celebrate Azadi with Eden Robe and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edenrobe.com. Eden Robe, a legacy of style. This September 12th and 13th, join us at the Indo-American Community Fair at Sri Krishna Mandir, Morganville.
6: Enjoy delicious Indian food, shopping, live cultural performances, a health fair, kids activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
7: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
5: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint. Celebrating its 25th year since its inception in 2001, VFS Global Today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008, we're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport, and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
10: अब मिर्ची खा.
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
13: It's 1:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
14: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर.

इन्होंने तो इसको द मिसगाइडेड काइट बोल दिया था। पुरानी जींस पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिक हिट फिल्म जिसमें थी वहीदा रहमान, जिसमें थे देवानंद साहब, विजय आनंद ने बनाई थी। मूवी का नाम द गाइड। ये फिल्म जो थी ये अडेप्टेशन थी आर के नारायण की वेरी पॉपुलर फिल्म द गाइड की। तो भाई उनसे यू नो सारी परमिशंस ली गई थी इस फिल्म को बनाने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा बॉलीवुड का तड़का तो डालना ही था ना, इसीलिए थोड़ा रोमांस एंगल भी दिखाया गया। बट ये बात आर के नारायण को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आफ्टर ही सॉ द फिल्म ही गेव एन इंटरव्यू टू अ मैगजीन जिसमें उन्होंने कहा था कि ये द मिसगाइडेड गाइड है। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें, इसी फिल्म के गाने विद मी श्रेया। तो बस यहीं पे रहना पड़ेगा।

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. And for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेक बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: Inefficient,
7: very complex,
8: clumsy or
9: confusion ही confusion.
5: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
10: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
11: Aap sun rahe hain Purani Jeans. Shreya ke saath. Sirf Mirchi par.

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड। तो मैं आपको बता रही थी कि देव आनंद और विजय आनंद ने भाई जब अपने म्यूजिशियंस फॉर द फिल्म चूज किए, उनको हायर किया, तो उसमें थे हसरत जयपुरी साहब एज लिरिसिस्ट। लेकिन कुछ टाइम देने के बाद ना दोनों भाइयों को हसरत जयपुरी साहब के गाने कुछ समझ नहीं आए, तो उन्होंने शैलेंद्र जी को हायर किया। शैलेंद्र जी ने इस फिल्म के गाने बनाने शुरू किए। लेकिन जब हसरत जयपुरी साहब जा रहे थे और शैलेंद्र जी आ रहे थे, तो हसरत साहब ने ना एक गाना जो आधा अधूरा था वो सुनाया था शैलेंद्र जी को, और उस गाने की जो पहली लाइन थी ना वो शैलेंद्र जी ने रखी। वो गाना ये था, और इसकी जो फर्स्ट लाइन है ना, ये लाइन दी थी हसरत साहब ने, आगे इसको कंटिन्यू किया शैलेंद्र जी ने।

0: याद
1: सो दिस लाइन, दिन ढल जाए हाय रात ना जाए तू तो ना आए तेरी याद सताए, ये वाली जो लाइन है ये हसरत साहब की थी, लेकिन अगर आप क्रेडिट देखोगे तो ये शैलेंद्र जी का है, बिकॉज आफ्टर दैट द एंटायर सॉन्ग वाज रिटन बाय हिम. यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट. मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जींस.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRB प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो मिर्ची.

0: Range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

विजय आनंद ने दादा को बोला था कि इस पूरे गाने को ऐसे कंपोज करो जैसे हर स्टैंजा ना अलग गाना है। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड, इस फिल्म की बातें और इस फिल्म के गाने। अच्छा, ये एक गाना जो गाइड का था ना, दिस वॉज अ वेरी टफ सॉन्ग टू कंपोज। एक तो ये लंबा भी था, इसमें हरकतें भी बहुत सारी थी और दादा

को ना थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, तो विजय आनंद हु इज डायरेक्टिंग द फिल्म, उन्होंने पता है उनसे क्या कहा कि हर स्टैंजा को ऐसे कंपोज करो जैसे कि ये अलग गाना हो. एंड विजय आनंद ऑल्सो थॉट कि गाइड में ना वो हर स्टैंजा को अलग अलग जगहों पे दिखाएंगे, ऐसे ही पिक्चराइज करेंगे. जबकि वो हुआ नहीं, बिकॉज वहीदा रहमान का खूबसूरत डांस इस गाने में था. यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट. मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
4: Looking for the best care for your child? 7 Days Pediatrics in Edison is here for you.
5: From newborn to adolescents, we offer comprehensive care. Get hassle-free same-day appointments, immunizations, and well-child visits.
4: Our multilingual staff is available evening and weekends, along with easy telehealth options, proudly serving the Edison and Woodbridge areas. Book your appointments today. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-307-0668.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
8: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक। They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
9: Batting to kaafi saare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
10: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
9: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
11: Ise apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chaabi nikal kar hi kholunga.
9: Moral of the story, number one, sirf ek hi hota hai.
12: Ek hi hota hai. Radio Mirchi.
9: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

दादा ने अपना पूरा बटुआ खाली कर दिया था मेलोडी से भरा हुआ फॉर दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड 1970s में फिल्म आई थी गाइड, जिसकी आज बात हो रही है। सो नवकेतन फिल्म्स यानी देव साहब का बैनर और उनके भाई विजय आनंद का बैनर, वो हमेशा जब भी फिल्म बनाते थे तो एसडी बर्मन साहब को हायर करते थे। इस बार क्या हो रहा था कि दादा उस टाइम पे आ चुके थे जब उनकी जगह नए म्यूजिशियंस को हायर किया जा रहा था, फिर चाहे वो उनके बेटे आरडी बर्मन साहब ही क्यों ना हो। सो एसडी बर्मन साहब को ना एक मौका, वो एक फिल्म चाहिए थी जिसमें वो अपना मिरेकल एक बार फिर से दिखा पाए, एंड गाइड प्रूव्ड टू बी वन ऑफ देम। व्हाई? बिकॉज उन्होंने अपना सारा बटुआ खाली कर दिया। मेलिफ्लुस ट्यून्स लाइक आओ, गाता रहे मेरा दिल ले लो, तेरे मेरे सपने ले लो, यू नो इतने सारे गाने, कांटो से खींच के आंचल ले लो, पिया तो से ले लो। तो इसी बात पे आज फिर जीने की तमन्ना है। कमिंग ऑन राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया। एस डी बर्मन साहब ने कंपोज किया है, लता जी की आवाज है और वहीदा रहमान का डांस था, शैलेंद्र जी के लिरिक्स। अप नेक्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
4: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
2: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
5: Food?
6: Yes.
5: Shopping?
6: Yes.
5: Entertainment?
6: Double yes.
5: Or health fair?
6: Of course. Sab kuch ek hi jagah. Indo-American Community Fair. September 12th or 13th. Sri Krishna Mandir, Morganville.
7: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
8: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint. Celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008, we're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
9: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
11: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
12: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
13: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: It's 2:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

देव आनंद को लगा कि उनका कोई सिग्नेचर ट्यून, सिग्नेचर गाना तो है ही नहीं इस फिल्म में, और फिल्म काफी टाइट चल रही, काफी स्ट्रेस में चल रही है। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड टुडे। सो देव साहब ने जब ये पूरी पिक्चर बन गई और देखी अपने भाई विजय आनंद हु वाज डायरेक्टिंग द फिल्म एज वेल, उनके साथ बैठ करके ना, तो देव साहब को लगा कि भाई इसमें मेरा कोई सिग्नेचर गाना तो है ही नहीं, क्योंकि वो जनरली एक आध गाना ऐसा सुपर डुपर हिट देते थे अपनी फिल्म का जिसमें बस वो गुनगुना रहे हैं और चलते जा रहे हैं, जैसे कि हम दोनों में है ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता, राइट। तो क्या हुआ, जब पूरी पिक्चर कंप्लीट हो गई फिर इस पे म्यूजिशियंस को वापस बैठाया गया। एसडी बर्मन साहब, शैलेंद्र जी ने गाना लिखा एंड ऑफ कोर्स देव साहब इसमें एकदम अपनी मस्ती में चलते जा रहे हैं और गा रहे हैं मेरा दिल। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
3: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
2: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Tera kya hoga, Kalia?
9: Sardar, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
8: अब मिर्ची खा।
10: Radio Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जब पहला सीन लिया गया तो डायरेक्टर विजय आनंद को लगा कि देव साहब के आगे वैजंती माला तो थोड़ी चबी चबी लग रही है पुरानी जीन्स पे. आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड. सो वैजंती माला को इस फिल्म के लिए चूज किया गया था और डायरेक्टर विजय आनंद ने ना ऐसे ही जब फर्स्ट टेक लिया तो दे थॉट कि वैजंती माला देव साहब के आगे थोड़ी प्लम्प लग रही है. अब भाई विचार विमर्श हुआ देव साहब से भी, फिर क्या हुआ, इन केम वहीदा रहमान. और जब वहीदा रहमान आती थी तो एक्टिंग के साथ अपने डांसिंग स्किल्स भी लेकर के आती थी. ये आपको देखने को मिलेगा गाइड में जब उन्होंने वो गाना किया है ना, आज फिर जीने की तमन्ना है. ओ हो हो पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया. अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है ना तो बस इस आवाज़ के पीछे आपको मिल जाऊंगी फेसबुक और इंस्टा पे. हैंडल है मेरा RJ Shreya with Love. That's RJ SHRUYA Shreya with Love.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2 इट्स हॉट।

0: नाम साडी सुन, सात हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ऑन गाना नंबर 10. ये उन गानों में से है जिनके मैं लिरिक्स कभी भी ठीक से गा के नहीं बता पाऊंगी, बस धुन गा दूंगी और समझ जाओ.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक. बंदी का नाम है आरजे कनिका. अभी के अभी जाओ इंस्टाग्राम पे, फोन हाथ में ही रहता है, कनेक्ट करो @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर. कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप. कई बार ऐसा होता ना कि गाने के बोल नहीं याद रहते, सिंगर कौन है वो भी आप में भी भूल जाएं, लेकिन वो शुरू वाली धुन या कोई इंस्ट्रूमेंटल पीस वो कहीं से भी आप सुने यानी एकदम पूरा गाना याद आ जाता है. सिर्फ गाना ही नहीं, फिर गाने की वीडियो, सिंगर की हिस्ट्री सब याद आ जाती है. हर कंपोजर चाहता है कि उनके गाने में ऐसी टेक अवे मेलोडीज हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंटल पार्ट हो जिन्हें कहीं से भी हम सुने और गाने के साथ जोड़ते हैं. एक आर्टिस्ट जो बहुत सक्सेसफुली ये करते हैं इस बादशाह. चाहे आप गाने के लिरिक्स से अग्री करें ना करें, लेकिन बीच में एक मेडली होती है जिसपे आप थिरक ही जाते हैं, लाइक दिस वन इन मर्सी. माय फेवरेट बादशाह इंट्रो हैज टू बी कर गई चुलका, ये वाला पार्ट. सच पावरफुल आइकॉनिक इंट्रोज कि एक बार गाना सुनने के बाद आप उसे गुनगुनाते रहेंगे. नाउ @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, मैं आपको बादशाह के एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ. जल्दी जल्दी @RJKanika पर आओ और बताओ ये कौन से गाने का इंट्रो है. @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ, साइड वाले को मत बताओ, आई नो बहुत इजी वाला है. बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाला गाना जो है ऐसे आर्टिस्ट का है जिनकी आवाज ही इतनी आइकॉनिक है दैट यू नो इट्स संजू राठौर. गाने का नाम है बैंगल्स. 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक बैंगल्स इज ऑन गाना नंबर 9. उसके बाद एश किंग का किनिया सोनी ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 9.

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, sabka bana.
3: Kya bana?
2: Murga, murga. Nabiyat wala murga.
3: Mirchi murga.
4: Hello.
5: Bhai sahab, Srinivas Puri Thane se bol raha hu. Mobile kahan se mila aapko? ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
4: क्या रिपोर्ट आ गई है?
5: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
4: मोबाइल चोरी हो गया?
5: हाँ जी। भाई साहब हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
4: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
5: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है इस नंबर से, गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
4: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
5: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
4: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
5: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
4: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
5: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
4: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
5: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
4: हाँ जी सर।
5: ये एक बंदा है, इससे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
4: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
6: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
4: कुकड़ों को
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
10: दिस इंडिपेंडेंस डे वी सेलिब्रेट नॉट जस्ट आवर फ्रीडम बट इंडियाज ग्लोबल फुटप्रिंट, सेलिब्रेटिंग इट्स 25th ईयर सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2001। VFS ग्लोबल टुडे सर्व्स ओवर 79 गवर्नमेंट्स, ऑपरेटिंग 4250 एप्लीकेशन सेंटर्स इन 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport, and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
12: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
12: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
14: Looking for the best care for your child? 7 Days Pediatrics in Edison is here for you.
15: From newborn to adolescents, we offer comprehensive care. Get hassle-free same-day appointments, immunizations, and well-child visits.
14: Our multilingual staff is available evening and weekends, along with easy telehealth options. Proudly serving the Edison and Woodbridge areas. Book your appointments today. Visit 7DaysPediatrics.com or call 732-307-0668.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
17: Tera kya hoga, Kalia?
18: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
17: Ab, mirchi kha.
19: Radio Mirchi, it's hot.
0: Ghana Indie Top 10
1: Kanika ke saath on Mirchi
3: number 7.

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: फरक की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है तारे. अ नई नवेली एंट्री दिस वीक, डेब्यूइंग सीधा ऑन गाना नंबर 6. मुझे लगता है कि हम सब ने मिलकर तारे को इतनी जोर से मैनिफेस्ट किया कि वो हमारे शो में डेब्यू कर चुका है ऑन नंबर 6. उससे पहले हमने सुना गाना नंबर 7 पर ज़ारा खान स्केल्स का गाना मूव बॉडी.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanega. Connect with me. Instagram par jao. Mera handle is @RJKanega. You know, har party mein ek time aata hai jab sirf Punjabi gaane chal rahe hote hain. Kahin na kahin pichle 10-15 saal mein hamara association with Punjabi music hi sirf ye tha. And jab main kehti hu na hamara, I mean wo log jinhe Punjabi bolni ya samajhni nahi aati. Aur jitni bhi aati hai wo sirf gaanon se aati hai, apne favorite artist aur singers se aati hai. Lekin pichle 4-5 saal mein I have seen a massive transition. और मेरे जैसे लिसनर के साथ ही, जो पहले सिर्फ पंजाबी गानों को डांस वाले गानों की तरह कंसिडर करती थी, आज आई हैव माय मोस्ट रोमांटिक फेवरेट्स फ्रॉम पंजाबी सॉन्ग्स. एंड ऑनेस्टली अब ये प्रूव भी नहीं करना पड़ता तो क्या हुआ मुझे नहीं समझ में आती तो क्या मैं गाने सुन नहीं सकती. बिकॉज आर्टिस्ट लाइक एपी टिल्लो, दिलजीत दोसांझ, करण औजला, उन्होंने वो गैप ही क्लोज कर दिया. एंड इस लीग के आर्टिस्ट में एक नए फेवरेट है कॉल्ड कुंवर, जिन्हें आज हम एक स्पेशल स्पॉटलाइट देने वाले हैं. बंदा बटिंडा का है, टोरंटो में बेस्ड. काफी इंटरेस्टिंग उनका म्यूजिक है. पंजाबी फोक को लेके उसमें हिप हॉप R&B का तड़का लगाते हैं एंड बैंगर्स ऑन बैंगर्स रिलीज कर रहे हैं. कुंवर का एक गाना है कॉल्ड क्रेजी फॉर यू, जिसके पीछे सब क्रेजी हो गए हैं. सच अ बिग सोशल मीडिया हिट दिस सॉन्ग हैज बीन. और बिल्कुल वही वाली फीलिंग है जो एक बंदे को जब उसे किसी पे क्रश होता है तब जो एक फीलिंग होती है ना, दैट आई हैव गॉन क्रेजी. मैं उसके बारे में कुछ और सोच ही नहीं पा रहा हूँ, दिन में भी, रात में भी, नींद में भी. फोन बार बार चेक करना, गेड़ी मारते हुए बस वही सोचते रहना, दोस्तों से मिलना सो दैट हम सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाएं कि उसके बारे में ना सोचे. ये सॉन्ग उसी को सेलिब्रेट करता है. इट्स अ वेरी हाई एनर्जी, फुल ग्रूवी, लेट नाइट सॉन्ग भी है, पार्टी सॉन्ग भी है. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आर्टिस्ट का नाम है कुंवर, गाने का नाम है क्रेजी फॉर यू. आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: Crazy for you by Coer this week on our Gana Spotlight at RJ Kanek on Instagram पर आओ. बताओ मुझे कोई ऐसा गाना जो आज भी आप रोज सुन रहे हो पर उसके लिरिक्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं. वो पंजाबी गाना हो सकता है, हरियाणवी गाना हो सकता है, इंग्लिश गाना भी हो सकता है, पर अच्छा लगता है तो लगता है. एट आरजे कनिका पर आके मुझे बताओ आपका वो कौन से वाला गाना है. नाउ बैक द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. गाने का नाम है उड़ी उड़ी. 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार अनीस सरकारन हृदय का गाना. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार उड़ी उड़ी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5.
1: नंबर 5.

0: से पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।
1: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके शीशा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। उससे पहले नूर खान मधुर एक्सो का आरजू दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
1: Mirchi par, this is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Is bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jao, connect karo, mera handle is @RJKanika. Koi baatein batani hai, koi gaana share karna ho, bindaas aake hit me up. Trust me, it really matters a lot. कभी कभी हम किसी को कुछ बात बताते हैं कि हाँ आपका ये काम यहाँ देखा था, या कभी कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, करते वक्त शायद हमें रियलाइज नहीं होता कि वो दूसरे इंसान के लिए कितनी बड़ी डील होती है। कुछ तारीफें ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर याद रह जाती हैं, कुछ इंटरैक्शंस ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर याद रह जाते हैं। मेरे लिए वो आप लोगों के मैसेजेस हैं, एंड दैट पर्टिकुलर शो विच आई रिमेम्बर, मेरा पहला शो था ऑन एयर, साल था 2019, अगस्त में ही मेरा पहला शो गया था और मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, एंड मैंने फुल एडमिट कर रखा था शो पर कि मेरा पहला शो है। इतने सारे मैसेजेस आए मुझे आप लोगों के, यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल द बेस्ट करने का, बहुत मजा आ रहा है एक गाने के बारे में, सो यू स्टार्टेड एंगेजिंग विद मी एंड इट मेड माय डे। अब मैं वो पुराना शो सुनती हूँ तो आई रियलाइज कि इतना भी अच्छा नहीं था, पर इट वॉज योर लव, योर कॉम्प्लीमेंट्स जो मुझे हमेशा याद रहेंगे। और एक आर्टिस्ट के साथ तो ये और भी गहरा होता होगा, किसी फैन का मैसेज या किसी ऐसे इंसान से तारीफ जिन्हें आप खुद अपना आइडल मानते हैं। आई रिमेम्बर ऐसी ही मेरी कॉन्वर्जेशन हुई थी अरमान मलिक के साथ बैक स्टेज एक अवार्ड फंक्शन पे, आफ्टर उन्हें एक अवार्ड मिला। पर अरमान ने मुझे कहा दैट उन्हें जितने भी अवार्ड मिले, सोनू निगम ने जब एक बार अरमान को फोन किया था और तारीफ करी थी कि बॉय यू किल्ड इट, मैं तेरा गाना सुन रहा था रेडियो पे और मजे आ गए, सोनू निगम का वो कॉम्प्लीमेंट अरमान के लिए हर अवार्ड से ज्यादा मीन करता है। पिछले साल इसी शो पर मेरी सोनू निगम जी से बात हुई थी, मैंने उनसे इस बारे में पूछा, एंड दिस इज व्हाट ही सेड।
3: अरमान टोल्ड मी दैट कोई अवार्ड या कोई वैलिडेशन उसके ऊपर नहीं है, ही सेड सोनू निगम कॉलिंग मी कि तेरा गाना रेडियो पे सुना है और तूने अच्छा गाया है इज द बिगेस्ट अवार्ड ही हैज रिसीव्ड।
4: मैं बिल्कुल, मैं इस फीलिंग को समझता हूँ, जब हमारे बड़ों ने हमारे बारे में कुछ कहा है, जब मंदाड़ी साहब ने मुझे बैक स्टेज कहा था एक बार, यू शुड हैव बीन बोर्न इन आवर टाइम, मार्वल एट द वे यू सिंग एंड यू शुड हैव, यू आर बोर्न इन द रॉन्ग एरा, यू शुड हैव बीन बोर्न इन आवर टाइम्स, वी वुड हैव गिवन यू द राइट कॉम्पिटिशन। ये मुझे अब इससे बड़ा अवार्ड क्या होगा। लता जी बोलें, मुझे सोनू निगम पसंद है, जगजीत सिंह बोलते थे मेरा फेवरेट है सोनू निगम और ए आर रहमान, तब ए आर रहमान भी नए थे, मैं भी नया था, सो यस आई वैल्यू दोस कॉम्प्लीमेंट्स।
1: यही बात है ना, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज कोई ट्रॉफी नहीं बट ये कॉम्प्लीमेंट है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, वी हैव टू प्ले द सॉन्ग जिसे सुन के सोनू निगम की तारीफ निकल गई, हमारी 10 साल से निकल रही है, अरमान मलिक की आवाज, अमाल मलिक की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है मैं रहूं या ना रहूं, आई कांट बिलीव इस गाने को 10 साल हो गए। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

The vocal capacity of Arman Malik is unparalleled and this song. अभी भी मुझे goosebumps आते हैं इस गाने को सुन के. I think this will go down as one of those classics जो मैं आज से 10 साल बाद भी play करूंगी और हमें ऐसा ही feel होगा. Arman Malik की आवाज, Arman Malik की composition, that was मैं रहूं या ना रहूं. At RJ Kalinga on Instagram पर आओ and tell me about your story. कभी कोई ऐसा compliment मिला हो जो आज भी बहुत special feel कराता है, मुझे आके बताओ. Back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी. आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खा का गाना. It's a Cook Studio भारत song. गाने का नाम है ए अजनबी. पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जम्प करके ये गाना पहली बार टॉप टू में गया है. ए अजनबी फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत. 16 हफ्ते इस काउंटडाउन पर बिताने के बाद पहली बार ऑन गाना नंबर 2. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. वंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 2.

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
1: Mirchi sun rahe hain aap, show ka naam hai Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi which is all about the hottest pop music of the week. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jao, jaldi jaldi follow karo, handle is @RJKanika. Follow karna to bilkul free hai, koi gaana suggest karna hai, baatein batani ho, bindaas aake hit me up. I might feature your favorite songs on the show. It's time for what we call कसर क्लासिक, जहां पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं, और ये हमारे शो का सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड सेगमेंट है. इतने सारे डीएम्स, इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि ये वाला गाना, वो वाला गाना. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज लकी अली का तेरे मेरे साथ. इस गाने के बाद इतने सारे थैंक यूज आए, इतने सारे और रिक्वेस्ट आए, और उन बहुत सारे रिक्वेस्ट में से द सॉन्ग वी गोइंग टू प्ले दिस वीक इज

गाने का नाम है दीवाना तेरा बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम। साल 1999, म्यूजिक साजिद वाजिद का, लिरिक्स फैज अनवर के। ये तब के हिंदी पॉप म्यूजिक की सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉप एल्बम में से एक थी एंड ये गाना उसका टाइटल ट्रैक। बट बियॉन्ड ऑल द नंबर्स, बियॉन्ड द सेल्स, आज 2026 में भी जब मैं ये गाना सुनती हूँ, इट टेक्स अस बैक टू दो सिंपलर टाइम्स यार, जिसके बारे में बस अब हम कहानियों में सुनते हैं। जब प्यार प्यारा था, इनोसेंट था, एक भोला बंदा, वो पहले पहले प्यार वाली चीजें, यू नो, जब आप किसी को चाहते थे और बस चाह कर ही खुश हैं, एक तरफा प्यार में खुश हैं, तेरी मर्जी तो आए ना आए। आई रिमेम्बर सोनू निगम ने हमें कई दफा इस शो के जरिए बताया है दैट इतने सारे लोग उनके पास आते थे, बोलते थे ये गाना सुन के इतनी जोर से प्यार आया कि मैंने जाके प्रपोज ही कर दिया। एक्चुअली 90s एंड अर्ली 2000s का ये वेरी प्रपोजल फर्स्ट सॉन्ग था। तो अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, लेट्स फील द लव इन द वॉइस ऑफ सोनू निगम। दीवाना एल्बम से दिस इज दीवाना तेरा, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनेका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10, एंजॉय।

What an utterly butterly song, man. Sonu Nigam ki awaaz and the range in this composition. Gaane Galam Di Wana Tera on a cassette classic this week at RJ Kaneko on Instagram par aao. 90s 2000s ki yehi wale gaane, you know, which makes us feel all the love again. Kaun sa hai wo gaana? From the pop classics, humse aake share karo. We might feature your favorite next week. Now back to the countdown. It's time for the numero uno song of the week. ये गाना 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर डटा हुआ है. पिछले हफ्ते नंबर 2 पर था, यानी इस हफ्ते एक पोजीशन ऊपर जंप करके वापस इसने नंबर 1 की पोजीशन ले ली है. गाने का नाम है बैरन, आर्टिस्ट का नाम है बंजारे. दिस हरियाणवी सॉन्ग इज

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
7: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
8: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

दोस्तों मिडवीक का भी ना एक अजीब ही फेज होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब मंडे का शौक निकल जाता है ना और फ्राइडे की एक्साइटमेंट आई नहीं होती है, तब ये जो मिडवीक है ना यानी वेंसडे, ये बिल्कुल मूवी का इंटरवल जैसे लगता है। मतलब स्टोरी तो चल रही है पर क्लाइमैक्स अभी दूर है। और इसी वक्त ना इंसान सबसे ज्यादा चाय पीता है और सबसे ज्यादा बस वीकेंड आ जाए यही बोलता रहता है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार इसी मिडवीक में ना सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आइडियाज भी आते हैं। तो आप भी बताना दोस्तों कि आपका मिडवीक मोटिवेशन क्या है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मिडवीक में आपके मूड को अप करने के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burka, burka. La
1: fiesta la burka. Mirchi, burka. हेलो,
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे
2: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए, ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
2: नहीं,
1: है?
2: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ।
1: पूरी
2: नहीं, नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
1: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ आप, चाहिए हमारे पास तो?
2: नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
1: ये कॉपी मुझे भी भेजना
2: राज जी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेजना।
2: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वांटेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
1: कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington.
8: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
9: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
8: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
10: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
11: Desi khana,
12: desi shopping,
11: desi culture
12: aur desi entertainment.
11: Bas ek hi destination.
12: Indo-American Community Fair, September 12th aur 13th, Shri Krishna Mandir, Morganville.
13: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
12: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008, we're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
14: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
17: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
18: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
17: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन.
19: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
20: फिल्मों
19: में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है.
21: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
19: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
22: एक ही होता है.
19: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

की टाइम। एक फ्रीडम ऐसी भी जो किसी कैलेंडर पे नहीं लिखी होती। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और वो फ्रीडम है जो मन करे वो पहनने की फ्रीडम। याद है वो टाइम जब फैमिली फंक्शन से पहले मम्मी बोलती थी कि ये पहन लो ये अच्छा लगेगा, और हमारा जवाब होता था नहीं मुझे तो वो पहनना है, क्योंकि अपनी मनपसंद चीज पहनने का भी एक अलग ही मजा होता है, क्योंकि स्टाइल शायद हमारी पर्सनालिटी का सबसे फन एक्सप्रेशन होता है, और हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, कभी ट्रेडिशनल कभी मॉडर्न कभी सिंपल और कभी फुल मेन कैरेक्टर मोड। और इस आजादी सीजन अपनी स्टाइल को चूज करने की फ्रीडम को इडन रो भी सेलिब्रेट कर रहा है। अगस्त 6 से 16 तक एंजॉय फ्लैट 35% ऑफ ऑन अपैरल फॉर मेन विमेन एंड किड्स, और फ्लैट 10% ऑफ ऑन ऑल द फ्रेग्रेंसेस। विजिट देयर फ्लैगशिप स्टोर इन नॉर्थ ब्रंसविक न्यू जर्सी या नेशन वाइड शॉप कीजिए एट us.edenrobe.com। Eden Rope, a legacy of style। और दोस्तों अगर आपकी पर्सनालिटी एक बॉलीवुड कैरेक्टर होती तो कौन सी होती जरूर बताना। DM me on Insta @rjmirchisiddhi SIDDHI। और फिर एक ऐसा गाना उस मेन कैरेक्टर एनर्जी के नाम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
4: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी. डीप, खाओ तो जानो.
6: Looking for the best care for your child? 7 Days Pediatrics in Edison is here for you.
7: From newborn to adolescents, we offer comprehensive care. Get hassle-free same-day appointments, immunizations, and well child visits.
6: Our multilingual staff is available evening and weekends, along with easy telehealth options. Proudly serving the Edison and Woodbridge areas. Book your appointments today. Visit 7DaysPediatrics.com or call 732-307-0668.
8: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
10: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islin.
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
11: अब मिर्ची खा.
13: रेडियो मिर्ची. It's hot.

0: It's 4:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price. Sham Shandar. Let's do not
1: donkey, have a funky time. डेट नाइट का एक्साइटमेंट ना दोस्तों रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद नहीं थोड़ा पहले ही शुरू हो जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और प्लान चाहे हफ्तों पहले बने हो या शाम को अचानक डिसाइड हुआ हो, रेडी होते वक्त मूड ना ऑटोमेटिकली थोड़ा चेंज हो ही जाता है। फेवरेट आउटफिट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, फेवरेट फ्रेग्रेंस और सबसे इम्पॉर्टेंट वो फीलिंग कि आज रूटीन से कुछ अलग होने वाला है। और ऑनेस्टली चाहे सालों पहले की रिलेशनशिप हो या नई नई डेटिंग, कभी कभी ऐसे ही कुछ मोमेंट्स होते हैं जो एक सिंपल से डिनर को भी ना थोड़ा स्पेशल बना देते हैं। तो अगर आजकल आपके कैलेंडर में भी ऐसी कोई इवनिंग आ रही है तो उसे थोड़ा और ड्रेसअप करने का एक बहाना तनिष्क भी दे रहा है। तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स विद अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, 0% डिडक्शन on exchange of old gold above 18 carat. Terms and conditions apply. So, aaj hi visit kijiye Tanishq store at 1429 Oak Tree Road, Iselin, New Jersey and add the diamond glam to your love story. Usi ke saath mujhe zarur bataiye ki aapka ultimate date night Bollywood song kaun sa hai. DM me on Insta at RJ Mirchi Siddhi, SIDDHI. Aur chaliye mere romantic playlist ka ye agla gana right here on Mirchi. It's hot.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड्स सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड्स सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी। आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने, वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
10: दिस गोल्डन आवर इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क। सुनहरी होगी ड्राइव जब तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी से सुनहरी होगी हर वाइब।
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम द लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है धूम थ्री के मलंग गाने से। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर कैटरीना कैफ का एरियल एक्ट यानी जितने भी सर्कस स्टाइल परफॉर्मेंसेस थे, फ्लिप्स थे, बैलेंस थे, ग्रेस था, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन पर्दे के पीछे इस गाने के लिए ना एक फुल ऑन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड था, क्योंकि कैटरीना ने इस गाने के लिए प्रोफेशनल एक्रोबैटिक ट्रेनिंग ली थी, बॉडी कंडीशनिंग की थी और मंथ्स तक रिहर्सल किए थे, क्योंकि ये कोई रेगुलर बॉलीवुड डांस नहीं था। इसमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और टाइमिंग सब कुछ एक साथ चाहिए था। और शूट के टाइम पर भी ना सेफ्टी और प्रिसीजन का पूरा ध्यान रखा गया था। तो सोचिए दोस्तों, जो परफॉर्मेंस हम बस 3 मिनट के लिए पर्दे पर देखते हैं, उसके पीछे महीनों की जिम और ट्रेनिंग छुपी होती है। तो इसका मतलब तो साफ है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सिर्फ डांस ही नहीं, फुल एथलीट बनना पड़ता है। और शायद इसीलिए कहते हैं बॉलीवुड का डांस नहीं है आसान। तो चलिए सुनते हैं धूम 3 का मलंग गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन से गाने के पर्दे के पीछे के किस्से आपको सुनने हैं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

की टाइम। बचपन में अगर कहीं रेडी होके जाना था तो हमारा काम कितना सिंपल था। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और बहुत ही आसान हो जाता था क्योंकि मम्मी हम सबको रेडी करने में बिजी हो जाती थी। चाहे फेस्टिवल हो, किसी की शादी हो, संडे को रिलेटिव्स के घर जाना हो, मम्मी का एक ही मिशन होता था, पूरी फैमिली टाइम पर तैयार होनी चाहिए। क्योंकि पापा पूछ रहे होते थे कि मेरा कुर्ता कहाँ है, बच्चों को मैचिंग कपड़े पहनाया जा रहा होता था और एंड में मम्मी खुद सबसे लास्ट में तैयार होती थी। तब वो ना बस घर का रूटीन लगता था। लेकिन आज सोचो तो वही छोटा सा केओस कितनी प्यारी सी फैमिली मेमोरी बन गई। और सबसे मजे की बात तो ये है कि अब हम बड़े हो गए लेकिन फैमिली को रेडी करने का सीन ऑलमोस्ट वही है, बस अब कपड़े चूज करने की बारी हमारी। तो इस आजादी सीजन इसी फैमिली वाली फीलिंग को यूएसए में और करीब ला रहा है ईडन रोप। ऑगस्ट 6 से 16 तक एंजॉय करे फ्लैट 35% ऑफ ऑन अपैरल फॉर मेन, women and kids, और flat 10% off on fragrances. Visit their flagship store in North Brunswick, New Jersey, या nationwide shop कीजिए at us.edenrope.com. Eden Rope, a legacy of style. और दोस्तों, बचपन में घर से निकलते वक्त आपके घर में सबसे लेट तैयार होने वाला इंसान कौन था? DM me honest at RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI, और उसी लेट लतीफ के लिए ये अगला गाना right here on मिर्ची, it's hot.

0: Milchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La virva la murga. Milchi, murga.
2: Hello.
3: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको। आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट? वन सेकेंड सर। सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000। वन सेकेंड सर, आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
2: नहीं तो।
3: आपने नहीं किया है?
2: नहीं
3: तो फिर किसने किया है सर? ये सर, ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
2: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
3: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम। मुझे पता चला, मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है। आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है।
3: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
2: मैंने 2 पैसे भी निकाले।
3: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
2: मैंने कोई पैसा निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
3: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको। मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
2: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है।
3: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं। मुझे नहीं पता आप मुझे क्या बताए। आप बतमीजी से बात मत करिए।
2: सबको लगा दूंगा लाइन में
3: सर। मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए, बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी। स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर। ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे। 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
2: क्या
3: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
2: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
4: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है। 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में, 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
2: लेकिन
3: सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है। नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
9: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
10: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
11: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
10: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
13: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
7: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155.
14: This September 12th and 13th, join us at the Indo-American Community Fair at Shri Krishna Mandir, Morganville.
15: Enjoy delicious Indian food, shopping, live cultural performances, a health fair, kids' activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
16: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
17: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
18: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
19: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
18: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
14: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1,000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज,
0: comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness. Guaranteed. Deep cow, to jaano.
20: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.

0: दोस्तों अपग्रेडेड रहना भी ना कितना जरूरी है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अपग्रेड्स तो यार हर जगह जरूरी है, फिर चाहे वो फोन को सिक्योर रखने के लिए एप्स अपग्रेड करना हो, या फिर जॉब में रेलेवेंट रहने के लिए स्किल सेट अपग्रेड करना हो, या फिर अपनी आइडियल लाइफ स्टाइल बनाने के लिए करंट लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना हो। बिकॉज विद टाइम गोल्स एंड ड्रीम्स डू चेंज। और ऐसे ही अगर आपके ड्रीम होम को भी अपग्रेड करना हो और आप सोच रहे हो कि क्या सेकेंड लोन पॉसिबल है या फिर क्या रीफाइनेंसिंग पॉसिबल है, तो लैंड मॉर्गेज हैज आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। इफ यू आर अ फर्स्ट होम बायर और यू आर लुकिंग फॉर रीफाइनेंसिंग और अ सेकेंड लोन, देन वी हैव विद अस आवर फ्रेंड बीश टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो चलिए सुनते हैं बीश का क्या कहना है। ओवर टू यू बीश।
1: Good evening, Mitchell listeners. Your friend Bish from Land Mortgage. If you are driving in traffic right now, dreaming about owning your first home or upgrading yourself to a bigger home, listen up. Because the home buying game just changed, a lot of buyers think that they need to put 20% down and a perfect credit score to keep keys in hand. Right now, we are seeing new lower down payment options and flexible credit guidelines designed specifically to get buyers off the sidelines and into the new homes. So please, buying your dream home, don't hesitate to call Land Mortgage today at 732-339-3155. Land Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate is 6.375%. 20-year fixed mortgage rate is 5.99%. 15-year fixed mortgage rate is 5.625%. So friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. It is lionmtg.com. Don't let high rates or down payment worries keep you renting. Call or text me directly at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Or you can visit us on our online at lionmtg.com. And I'll spell it out again, lionmtg.com. Let's make your home ownership goals happen and drive safe. Thank you very much. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
7: Celebrate Azadi with Eden Grove and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids, and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey, or shop nationwide at us.edengrove.com. Eden Grove, a legacy of style.
8: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
9: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint. Celebrating its 25th year since its inception in 2001, VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
10: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskura kar peesti, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती। वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
11: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
12: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
13: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
14: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

लंबी लंबी ट्रिप्स के बाद अगर कोई एक चीज की क्रेविंग होती है तो वो क्या है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सबके दिल से एक ही आवाज निकली होगी, घर के खाने की। जी हाँ, सफर चाहे कितना भी अच्छा हो, बाहर कितना भी खा लिया हो, एक पॉइंट के बाद ना दिल बस कुछ सिंपल गर्मा गर्म और अपना सा चाहता है। आपने कभी नोटिस किया है, थकान तो आधी तब उतर जाती है जब किचन से हल्की सी तड़के की खुशबू आती है और फिर याद आता है कि कुछ कंफर्ट फूड ना फैशनेबल नहीं होते, बस फॉरएवर होते हैं। और मेरे लिए उस सुकून का एक ही नाम है, एक गर्मा गर्म बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी, हल्की सी घी, साथ में थोड़ा सा अचार, और बस जैसे सफर की सारी थकान ही उतर गई हो। बॉडी को ऐसा ईज मिलता है और दिल को भी इतना ज़्यादा सुकून मिलता है विद जस्ट दैट वन बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी। इतना सिंपल सा खाना, लेकिन क्या कमाल का कम्फर्ट है, ऑनेस्टली अंडररेटेड। और ऐसे ही घर वाले स्वाद के लिए आज ही ले आइए दीप प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मूंग दाल फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। दीप, खाओ तो जानो और मुझे बताओ कि आपका कंफर्ट फूड क्या है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
8: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
9: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
10: Brought to you by Deep Foods. Deep Foods khao, to jano.
11: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
12: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
11: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
13: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
14: एक ही होता है।
11: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

मुझे तो बॉलीवुड की ये नई आदत बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, आजकल जब नई मूवीज रिलीज होती है ना, तो बॉलीवुड एक्साइटमेंट को थोड़ा थोड़ा करके सर्व करता है। कभी एक पोस्टर, कभी एक फर्स्ट लुक, कभी एक टीजर, और फिर आता है ट्रेलर। मतलब बॉलीवुड की सबसे इंटरेस्टिंग चीज ही पता है ये लगती है कि कभी कभी फिल्म से ज्यादा मजा उसके इंतजार में करवाता है। बस एक पोस्टर आता है और व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव हो जाते हैं, एक लुक रिलीज होता है और सब डिटेक्टिव बन जाते हैं। कोई कहता है कि यार ये कैरेक्टर ना कुछ जरूर छुपा रहा है और भी कुछ मसालेदार होने वाला है, तो कोई म्यूजिक का वेट कर रहा होता है, कोई ट्रेलर का, और कोई सीधा रिलीज डेट कैलेंडर में मार्क कर चुका होता है। मतलब फिल्म आने से पहले ही उसके आसपास इतनी एक्साइटमेंट बन जाती है कि लगता है कि कहानी स्क्रीन पर शुरू होने से पहले ही ऑडियंस के दिमाग में शुरू हो चुकी है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ बॉलीवुड ही कर सकता है। मतलब 2 मिनट का ग्लिम्स और पूरा देश की इमेजिनेशन फुल स्पीड में दौड़ने लगती है। वैसे आप ही बताइए कि जब किसी फिल्म की अनाउंसमेंट होती है, आप सबसे पहले किस चीज़ का वेट करते हो? उसके फर्स्ट लुक का, ट्रेलर का, या पहले गाने का? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम @RJMirchi सिद्धि SIDDHI। और चलिए इंतजार को थोड़ा छोटा करते हैं और सुनते हैं एक ऐसा बॉलीवुड गाना जिसका वेट कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है एक ऐसे एल्बम की यार जिसके हर एक गाने ने ना दिल को छू लिया था। जी हाँ, मतलब कभी कोई पल ऐसा आता है जहां वक्त रुक सा जाता है और बस दिल की धड़कनें चल रही होती है। मेट्रो इन दिनों का इन दिनों टाइटल ट्रैक वही गाना है जो यार टर्न पाइक या गार्डन स्टेट पार्कवे के ट्रैफिक में भी ना सुकून दिला दे। तो इस गाने की तैयारी के लिए प्रीतम ने सोहम से बस इतना कहा था कि ऐसा गाना कि लगे कि सूरज की रोशनी ना पर्दों के बीच में से आ रही हो। और आपको पता है ये जो गाना है इसका जो इंट्रो गिटार रिफ है मुंबई के एक बालकनी पे मॉनसून के दौरान रिकॉर्ड हुआ था ताकि रेन की ना थोड़ी नेचुरल सी साउंड आए और एक बहुत ही खूबसूरत सा एम्बियंस बने। और शायद इसीलिए ये गाना इतना एरी और सूना सूना सा लगता है। वैसे आपके इन दिनों में वो कौन सा मोमेंट है जब जिंदगी थोड़ी रुक सी गई है ऐसा लगता है? डीएम मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए इस पल को थोड़ा रोक लेते हैं विद द नेक्स्ट सॉन्ग इन दिनों फ्रॉम मेट्रो इन दिनों राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscaba la puscaba la sacaba la burga, burga, burga. La vieja la burga.
0: Mirchi burga.
2: Hello.
3: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
2: मोबाइल?
3: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
2: क्या रिपोर्ट आ गई है?
3: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
2: मोबाइल चोरी हो गया?
3: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
2: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
3: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
2: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
3: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
2: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
3: भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
2: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
3: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर बनाता हूँ।
2: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
3: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
2: हाँ जी सर।
3: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
2: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
4: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
2: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Inefficient,
10: very complex,
11: clumsy or
12: confusion ही confusion.
7: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
13: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
14: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
13: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
14: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzylin.
15: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
16: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
17: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
18: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
19: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
18: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: Tera kya hoga, Kalia?
9: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
5: Ab?
10: मिर्ची का
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

कुछ फोटोज देखते ही सारा सीन फिर से रिप्ले हो जाता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ फोटोज देखते ही ना सब कुछ याद आता है कि कौन लेट आया था, किसने सबसे ज्यादा फोटोज खींचे थे और कौन बिना रिहर्सल के डांस फ्लोर का हीरो बन गया था। फिर चाहे वो फोटोज बेस्ट फ्रेंड की शादी के हो, या पहली दिवाली विद फैमिली के हो, या कोई ऐसे फंक्शन की जहाँ सालों बाद सब एक साथ मिले हो। और इसीलिए तो फोटोज में ना सिर्फ चेहरे नहीं होते, पूरा मूड कैप्चर हो जाता है। और जब कोई मोमेंट इतना खास हो तो उस दिन पहनी हुई हर चीज भी उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। और शायद इसीलिए इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप का रिश्ता सिर्फ फैशन से ही नहीं, यादों से भी होता है। और अब उसी एहसास को न्यू जर्सी के और भी करीब लाया है फ्रंटियर रास। उनका यूएसए फ्लैगशिप स्टोर अब एडिसन में ओपन है, जहां हैंडलूम साड़ीज, ब्राइडल कोटोर, मेंस वेयर और रेडी टू वेयर के साथ मिलती है 70 ईयर लीगेसी ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप। विजिट फ्रंटियर रास एट 1655 ओक ट्री रोड इज़िलिन न्यू जर्सी। और दोस्तों, आपके फोन में वो कौन सी ऐसी फोटो है जो देखते ही आपको पूरा दिन याद आ जाता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और साथ में ये भी बताइए कि उस फोटो का परफेक्ट बॉलीवुड बैकग्राउंड सॉन्ग कौन सा था। हो सकता है कि आपकी यादों का वही साउंड ट्रैक मिर्ची पैग लगाना बन जाए। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
3: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
2: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
3: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
4: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
5: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
8: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी. एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
11: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
13: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स. गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस. विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी. कंडीशंस अप्लाई.
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
14: अब मिर्ची खा.
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
17: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहित.

0: expired 6:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Sharda, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ बातें होती है ना जो जुबा तक आते आते रुक सी जाती है, पर दिल उन्हें कभी छोड़ नहीं पाता। इन दिनों मेट्रो का बातें कुछ अनकही सी एक ऐसा ही गाना है। ये वो गाना है जहाँ हर नोट ऐसे गिरता है ना कि जैसे लगता है कोई पुरानी डायरी का एक बहुत ही खूबसूरत सा पन्ना खुल गया हो। और एक सुंदर सी कहानी इस गाने से जुड़ी है, मतलब इस गाने में जो हमिंग है, एक बहुत ही हल्की सी हमिंग है जो प्रीतम ने बैकग्राउंड में डाली थी, वो दरअसल इस गाने के कंपोजिशन में कभी थी ही नहीं। वो एक्चुअली ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन थी और एक पल में ही वो बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग इस गाने में वो जुड़ गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्ट हमिंग। और शायद इसीलिए ये गाना सुनते ही ऐसा महसूस होता है जैसे मेमोरीज खुद चलकर अपने पास आ रही हो। और इस गाने में एक बहुत ही खूबसूरत सी नरमी, एक बहुत ही शराफत और एक नज़ाकत है जो इस शाम को भी और खूबसूरत बना दे। तो चलिए इस खूबसूरत शाम को और भी खूबसूरत बनाते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो वो कौन सी ऐसी अनकही बात है जो आपके दिल में रह गई है और कभी किसी से आपने कही नहीं। टेल मी ऑन @RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और आज की ये जो शाम है उन्हीं अनकही लम्हों के नाम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeeturaj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेक बैटनो ऑल्सो MJ अर्थात जेंडाया एंड पीटर पार्कर यानी टॉम हॉलैंड इन दिस फिल्म इट्स अ लिटिल डिफरेंट इन फैक्ट आई कैन गो अहेड एंड टेल यू कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Celebrate Azadi with Eden Row and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edenrow.com. Eden Row, a legacy of style. This Independence Day, we celebrate not just our freedom but India's global footprint. Celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global Today serves over 79 governments operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008, we're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
8: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
9: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
10: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
10: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road Iselin
11: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी हर ड्राइव बनेगी यादगार

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और कभी कभी ना जिंदगी के सबसे बड़े सेलिब्रेशंस बिल्कुल छोटी छोटी जीतों में छुपे होते हैं। जी हाँ, मतलब शाम के इस वक्त में जब न्यू जर्सी की ट्रेन एकदम स्लो हो जाती है और लोग घर की तरफ बढ़ उठते हैं, कर सलाम इन दिनों मेट्रो का एक परफेक्ट रिमाइंडर लगता है कि लाइफ जितनी भी भाग दौड़ वाली हो उसमें छोटी छोटी विक्ट्रीज का सलाम जरूर बनता है। और इस गाने की मेलेडी एक कैजुअल जैम से निकली थी, मतलब म्यूजिशियंस ने ना टिन क्रेट्स और एम्प्टी कैन से बीट से एक पूरे सिटी हार्टबीट की वाइब क्रिएट की थी। और इसीलिए जब भी ये गाना बजता है ना, लगता है कि यार शहर खुद आपको सलाम कर रहा हो। तो दोस्तों मुझे भी बताइए कि आज की आपकी वो छोटी सी जीत क्या थी, एक ट्रैफिक लाइट का पेशेंस या एक बॉस को दिया हुआ सही जवाब। कुछ भी हो, सेंड मी योर सलाम मोमेंट ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए न्यू जर्सी के स्पिरिट को सलाम करते हुए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कम तो नहीं करते, बस उस दर्द को ना थोड़ी नजाकत से पकड़ लेते हैं। ओ मेरी जान, की आवाज में मेट्रो का एक ऐसा ही गाना था जिसमें हल्की सी वॉर्म्थ भी है, हल्का सा दर्द भी है और एक सुकून है जो यार शाम को ना बहुत ही खूबसूरत बना देता है। और कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो बिल्कुल भी शांत रखा गया था। मतलब वैसे तो यार प्लेबैक सिंगिंग में स्टूडियो जनरली शांत ही होता है, लेकिन ये स्टूडियो थोड़ा ज़्यादा खास था। नो एक्स्ट्रा लाइट्स, नो बिग सेटअप, बस के हेडफोन्स और एक इमोशनल सा साइलेंस। तभी तो यार शायद इस गाने में एक ऐसी स्टिलनेस है जिससे ना हार्ट ब्रेक भी खूबसूरत सा लगता है। तो अगर इस गाने को आपने दिल से महसूस किया के की आवाज़ में, तो आज की शाम में, न्यू जर्सी की इस खूबसूरत शाम में ये ट्रैक प्ले करते हैं आपके उस खास मेरी जान के लिए। तो चलिए, वैसे आप भी बता सकते हो ये गाना आप किसको डेडिकेट करना चाहते हो। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और ऐसा कौन सा खास एल्बम है जिसका हर एक गाना आपके लिए खूबसूरत है? फिलहाल तो सुनते हैं केके की आवाज में ओ मेरी जो, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो,
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे
2: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए, ये तो बताइए किस लिए, कहाँ पे लगाना
2: नहीं,
1: है?
2: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
1: तो
2: हाँ, वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी नहीं नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे, या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
1: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास? तो
2: नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना? ये
1: मुझे भी भेजना
2: राज जी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेज।
2: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
9: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक, they're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
10: Oh no!
11: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
12: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्याजी नी पावन उपस्थिति। 7 3 2 3 5 7 8 2 0 0 जय गुरु। Gurudev. Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice. This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008, we're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport, and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
14: कोहली goes down the ground, कोहली goes out of the ground।
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
13: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हर शहर के बीच में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो यार खास बन जाते हैं। लाइफ इन अ मेट्रो का रिश्ते, वही एक ऐसा गाना है जिसमें यार पूरे मेट्रो सिटी की हार्ट बीट बसी हुई है। मतलब ये मेलेडी एक कैजुअल सी लेट नाइट जैम सी बनी है, बिना स्क्रिप्ट, बिना प्लानिंग, बस दोस्ती और म्यूजिक की वॉर्म्थ। तो शाम के वक्त जब न्यूजर्सी में अपने दोस्तों के साथ बैठो ना, तो बस गिटार या कोई भी एक टिन के डब्बे के साथ भी एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना जब दिल से निकलता है तो वही गाना होता है यार लाइफ इन अ मेट्रो का रिश्ते। और इस गाने ने ना कुछ ऐसी ही फील दी है, मतलब ऐसा गाना है जो अक्सर हम सोचेंगे कि यार दोस्तों के साथ ही गाना चाहिए। तो बस आज लाइफ इन अ मेट्रो का रिश्ते ये गाना रिक्वेस्टेड है बाय आदित्य मदान, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में, अपने दोस्तों के लिए। तो दोस्तों लाइफ इन अ मेट्रो का ऐसा कौन सा गाना है जो आपके लिए खास है, मुझे जरूर बताना, वो बजाऊंगी मैं यहाँ। और अगर कोई ऐसा खास एल्बम है जिसका हर एक गाना आपके दिल को छूता है तो वो भी जरूर बताना। फिलहाल बजाते हैं आदित्य की रिक्वेस्ट पर रिश्ते फ्रॉम लाइफ इन अ मेट्रो राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इन टू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी.
10: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
11: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
12: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
11: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
13: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the U.S.
14: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
15: अब मिर्ची खा.
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
18: It's 7:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी अलविदा ना ज्यादा शोर नहीं मचाते, बस एक गीत बनकर दिल में उतर जाते हैं। लाइफ इन अ मेट्रो का अलविदा केके की आवाज में एक ऐसा ही गाना है, क्योंकि उनकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई है कि लगता है जैसे उन्होंने अपने दिल के अंदर की खामोशी को गाने में घुमा दिया हो। कहा जाता है कि अलविदा का जब फाइनल टेक हुआ था, वो रात को एक ऐसे लम्हे में रिकॉर्ड हुआ था जब स्टूडियो में ना सिर्फ एक फेंट सी स्मूथ सी लाइट थी, जैसे कि गाना खुद डार्कनेस को भी सूथ कर रहा हो। गाना सुनते ही एक अजीब सी पुरानी याद बहुत ही खामोशी से सामने आ जाती है, एक ऐसा गुड बाय जो कभी बोला या शायद कभी बोला ही ना गया हो। कभी कभी लगता है यार, केके ने जब ये गाना अलविदा गाया था तो शायद उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि किसी एक दिन वो भी हमें बिना बोले अलविदा कह जाएंगे। तो चलिए आज केके की ही याद में उन्हीं के एक बहुत ही बड़े फैन रमा, जो कि रहती है एडिसन में, उनकी रिक्वेस्ट पर अलविदा फ्रॉम लाइफ इन अ मेट्रो, ब्यूटिफुल एल्बम विच ऑल द ब्यूटिफुल सॉन्ग्स। तो दोस्तों, आपका भी कोई ऐसा खास एल्बम है जिसका हर एक गाना आपके दिल को छूता है तो मुझे ज़रूर बताना ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं रमा की रिक्वेस्ट पर अलविदा फ्रॉम लाइफ इन अ मेट्रो, केके की आवाज़ में, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Mirchi, fresh maal.
2: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: साथ जीतू राज, only on Mirchi, it's hot.
2: Hi, my name is Peter Parker.
3: Oh, K-Den, Spider-Man brand new day aa gayi hai. And for God's sake, please, theater mein jaakar hi dekho, is what Jeetu Raj will tell you. Kyunki is film mein kahi chhoti-chhoti aisi cheeze hain, especially jab characters aapas mein baat karte hain, to unki whispers, unka pyaar, unka ghussa, wo theater mein jo maza deta hai, wo kahi bhi nahi dega. And for God's sake, kisi se bhi story mat suno, don't take any spoilers. Film mein kahi aisi cheeze hain, jo tere ko itna surprise kar jayengi.
4: Spiders have 3 life cycles.
3: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू, एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओह ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने, वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद 4 मिर्चीज।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Celebrate Azadi with Eden Grove and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edengrove.com. Eden Grove, a legacy of style.
8: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
9: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses aur grooms ke liye stylish sherwanis.
8: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
9: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
11: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स, गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी। कंडीशंस अप्लाई।
12: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
13: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
14: Tera kya hoga, Kalia?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
14: अब
15: मिर्ची का
16: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
17: शाम शानदार लेट्स डू नॉटंकी हैव अ फंकी टाइम
18: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विद नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: कभी आपके साथ ऐसा हुआ है दैट यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टू रियली इंटेलिजेंट पीपल जो बहुत ही इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं लेकिन उन्हें एक सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही है दैट दे आर मेड फॉर ईच अदर. टेक फॉर इंस्टेंस माय बेस्टी एंड दिस वन गाय हु इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हर्स जिसे मैं कल पहली बार मिली. तो हम तीनों कैफे में बैठे हुए हैं और वो कहती है यार मैं ना बहुत बोरिंग इंसान हूँ. और वो कहता है एग्जैक्टली प्लस वन मैं भी बहुत बोरिंग इंसान हूँ. वो कहती है मुझे घर पर रहकर खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है. He says, ditto, मुझे भी घर पर रहकर खाना बनाना अच्छा लगता है. She says, अगर मुझे वेकेशन का चांस मिले ना मैं तो बस बीच पर बैठ के किताबें पढूं. He says, same for me, plus one that too. And I wanted to say कि क्या तुम दोनों अंधे हो या बहरे हो या तुम्हारी